FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: smack them back.
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is a matter in the house. Come on, all.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाई नाजरीन, आज 5/7/2026 का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दिन के 11 बजा चाहते हैं। हमारे प्रोग्रामों की तफसीर कुछ इस तरह होगी, रूटीन्स के लोगो होंगे, किताब होगा, नात होगी, और उसके बाद यहाँ जो हमारे लोकल मेहमान होते हैं, हमारे थिंक टैंक या हमारे मेहमान जो इस हफ्ते के होते हैं, जो पहले से हमारे साथ उनका टाइम तय होता है, उनसे बातचीत करेंगे। डेनमार्क की सियासत, कम्यून की सियासत, हमारी लोकल सियासत, हमारे लोकल प्रोग्राम जो लोकल प्रोग्राम होते हैं मुख्तलिफ हवालों से, मौसम पर भी बात करेंगे और बीमारियों पर भी बात करेंगे, सियासी बीमारियों की भी बात करेंगे, इलाज की तरफ भी जो है बढ़ने की कोशिश करेंगे, और लेकिन कम्यून के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं उनकी भी बात करेंगे, और जो वाक़यात होते हैं उन पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। समय नाज़रीन, ये कानून जितने बनते हैं किन की वजह से बनते हैं? कानून बनते हैं आपकी हिफाजत, जानो माल की हिफाजत के लिए बनते हैं। जब कानून तोड़े जाते हैं तो फिर कानून डेफिनेट वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। जब सख्त होते हैं तो फिर लोग शोर डालते हैं कि जी फलां कानून बन गया, फलां कानून बन गया, ये सख्तियां कर दी। जब हम आए थे तो उस वक्त सख्तियां नहीं थी, जब उस वक्त आए थे तो आप कानून का एहतराम करते थे, सख्तियां भी कम थी। जब कानून का एहतराम करना छोड़ दिया तो फिर सख्तियाँ भी आ जाती हैं। तो कानून तो इसी तरह चलता है ना, कानून मेरी मर्ज़ी या किसी दूसरे की मर्ज़ी से तो नहीं चलेगा, कानून बनाए जाते हैं और कानून तब्दील भी होते रहते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट में जब लोग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती है, आपको अक्सरियत चाहिए होती है, जमहूरियत का नाम ही यही है। इसके अलावा आप लोग या हम लोग सियासी, यहाँ की डेनमार्क की सियासी जमातों के मेंबर नहीं बनते, अपना असर रसूख बढ़ाते नहीं हैं, पार्टियों में जाते नहीं हैं, एक ही दिन हम मेंबर बनना चाहते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हम पार्लियामेंट के मेंबर भी बन जाएं, कम्यून के मेंबर भी बन जाएं, हम मेयर भी बन जाएं, डिप्टी मेयर भी बन जाएं, लेकिन हमने काम नहीं करना, हमने अपनी ज़ात को आगे बढ़ाना है, हमें क्या लगे कम्यूनिटी क्या कर रही है। आप देखें, एक ज़माने में अगर जिन लोगों को याद है, पुराने लोगों को याद है कि जब जहाज़ का सफ़र किया जाता था तो महफूज तरीन सफ़र होता था। उसके बाद जब कानून तोड़ने की बातें शुरू हुई, आपको एयरपोर्ट पर सहूलियात मिलती थी, आपको इमिग्रेशन में सहूलियात मिलती थी, शॉपिंग करते थे आपको सहूलियात मिलती थी, एकदम आप टिकट करा के अपनी बोर्डिंग करा के जब सीधे आगे चले जाते थे, बस छोटी मोटी चेकिंग होती थी। लेकिन अब आपको जो चेकिंग की जाती है उसकी वजह क्या, उसकी वजूहत क्या है? हमारे अपने कसूर। देखना, ये जो जाकर जहाज अगवा करना, उसके बाद जो कुछ चीज़ें गलत चीज़ें लेकर जाना, कारोबार करना दूसरी चीज़ों गलत चीज़ों का, कानून के जो कानूनी मना है, तो जब ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं उस बंदे का जब निकल जाता है तो उसका फ़ायदा होता है, नुकसान किसका होता है? तो समझ नाज़रीन, इन लोगों पर आपको भी नज़र रखनी चाहिए कि ये जो क्रिमिनेलिटी है फिर उन्हीं को बेचारों को तकलीफ़ होती है, फिर वो मुसीबत में मारे जाते हैं, लंबी लंबी सज़ाएँ हो जाती हैं, फिर कानून को गालियाँ दी जाती हैं, सियासतदानों को गालियाँ दी जाती हैं, और हम फिर अपना भी अपना जो है तबसरा करना शुरू कर देते हैं। तो हमें समझ नाज़रीन, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की हमें सियासत करनी चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। जहाँ भी कानून का एहतराम किया जाता है आपको सहूलियात मिलती हैं, जहाँ भी अच्छे काम होते हैं आपको सहूलियात मिलती हैं। अगर कोई कानून को तोड़ेगा, दुनिया के किसी हिस्से में भी तोड़ेगा, तो कानून हरकत में आता है। जो मर्जी आप कर लें, कानून से कोई नहीं लड़ सकता, स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता। समय नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
3: Det var en af de varmeste somre. Nogen kunne huske, at solen stod højt på himlen hver eneste dag, og temperaturen steg til over 30 grader. Fuglene sang fra de grønne træer, og duften af nyslået græs bredte sig i luften. Børnene nød deres sommerferie. De cyklede til stranden, byggede sandslotte og hoppede i det kølige hav for at blive afkølet. Nogle spillede fodbold i parken, mens andre spiste is i skyggen under store træer. Om aftenen samlede familierne i haverne. Grillen blev tændt, og duften af grillede pølser og majs fyldte luften. Folk sad længe udenfor, fortalte historier, og så solen går langsomt ned, mens himlen blev fra orange, pink og lilla. Selvom varmen nogle dage var næsten for meget, fandt alle små måder at nyde sommeren på. De drak masser af vand, søgte skygge midt for dagen og tog en dukker, når solen blev for stærk. Da sommeren nærmede sig til sin afslutning, begyndte dagen langsomt at blive kortere. Men minderne om de lange lyse aftener, de kolde is og de glade stunder med familie og venner vil vare længe. Det blev en sommer, som mange vil huske. Ikke kun på grund af varmen, men fordi den bragte mennesker tættere sammen og gav dem tid til at nyde de enkle glæder i livet. Tusind tak fordi du lytter med. Vi ses næste gang.

जी फलां कानून बन गया, फलां कानून बन गया, ये सख्तियां कर दी। जब हम आए थे तो उस वक्त सख्तियां नहीं थी, जब उस वक्त आए थे तो आप कानून का एहतराम करते थे, सख्तियां भी कम थी। जब कानून का एहतराम करना छोड़ दिया तो फिर सख्तियां भी आ जाती हैं। तो कानून तो इसी तरह चलता है ना, कानून मेरी मर्ज़ी या किसी दूसरे की मर्ज़ी से तो नहीं चलेगा, कानून बनाए जाते हैं और कानून तब्दील भी होते रहते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट में जब लोग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती है, आपको अक्सरियत चाहिए होती है, जमहूरियत का नाम ही यही है। इसके अलावा आप लोग या हम लोग सियासी यहाँ की डेनमार्क की सियासी जमातों के मेंबर नहीं बनते, अपना असर रसूख बढ़ाते नहीं हैं, पार्टियों में जाते नहीं हैं, एक ही दिन हम मेंबर बनना चाहते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हम पार्लियामेंट के मेंबर भी बन जाएं, कम्यून के मेंबर भी बन जाएं, हम मेयर भी बन जाएं, डिप्टी मेयर भी बन जाएं, लेकिन हमने काम नहीं करना, हमने अपनी ज़ात को आगे बढ़ाना है, हमें क्या लगे कम्यूनिटी क्या कर रही है। आप देखें एक ज़माने में अगर जिन लोगों को याद है, पुराने लोगों को याद है कि जब जहाज़ का सफ़र किया जाता था तो महफूज तरीन सफ़र होता था, उसके बाद जब कानून तोड़ने की बातें शुरू हुई आपको एयरपोर्ट पर सहूलियात मिलती थी, आपको इमिग्रेशन में सहूलियात मिलती थी, शॉपिंग करते थे आपको सहूलियात मिलती थी, एकदम आप टिकट करा के अपनी बोर्डिंग करा के जब सीधे आगे चले जाते थे, बस छोटी मोटी चेकिंग होती थी। लेकिन अब आपको जो चेकिंग की जाती है उसकी वजह क्या, उसकी वजूहत क्या है, हमारे अपने कसूर। देखना ये जो जाकर जहाज अगवा करना, उसके बाद जो कुछ चीज़ें गलत चीज़ें लेकर जाना, कारोबार करना दूसरी चीज़ों गलत चीज़ों का, कानून के जो कानूनी मना है, तो जब ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं उस बंदे का जब निकल जाता है तो उसका फ़ायदा होता है, नुकसान किसका होता है। तो समझ नाज़रीन इन लोगों पर आपको भी नज़र रखनी चाहिए कि ये जो क्रिमिनेलिटी है फिर उन्हीं को बेचारों को तकलीफ होती है, फिर वो मुसीबत में मारे जाते हैं, लंबी लंबी सज़ाएँ हो जाती हैं, फिर कानून को गालियाँ दी जाती हैं, सियासतदानों को गालियाँ दी जाती हैं और हम फिर अपना भी अपना जो है तबसरा करना शुरू कर देते हैं। तो हमें सामान्य नाज़रीन जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की हमें सियासत करनी चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए, जहाँ भी कानून का एहतराम किया जाता है आपको सहूलियात मिलती हैं, जहाँ भी अच्छे काम होते हैं आपको सहूलियात मिलती हैं। अगर कोई कानून को तोड़ेगा दुनिया के किसी हिस्से में भी तोड़ेगा तो कानून हरकत में आता है, जो मर्ज़ी आप कर लें, कानून से कोई नहीं लड़ सकता, स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता। समझ नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिए, अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।

सुन रही है ऐसी, जिससे ज्यादातर ये जो है अपना तितली बनती है, वो बाद में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन वो बम्बू कुत्ता जिसको हम पंजाबी में कहते थे, वो बहुत ही खतरनाक होता था कि जिस्म के किसी हिस्से पे लग जाए तो वहां पे वो सुर्ख दाने निकल आते थे और बर्निंग इतनी ज्यादा होती थी, खारिश, और उसके साथ आदमियों को वॉमिटिंग और बीमारी लग जाती थी। ये किसी तरीके से गंसे के जंगलात में आ गए हैं और वहां के बागात में आ गए हैं, लेकिन हुकूमत उससे बहुत ज्यादा परेशान है और वो ये सोच रहे हैं कि वो पूरे डनमार्क के अंदर ना फैल जाए। तो लिहाजा आप अगर इस तरह की चीजें देखें किसी दरख्त पे, तो ये आपका फर्ज है कि आप फौरन से पहले पुलिस को या लोकल गवर्नमेंट को जो है वो इन्फॉर्म करें। तो ये था मौसम का हाल। मौसम अच्छा है, लोगों को अभी थोड़ी बहुत खांसी है, इसकी वजूहत ये है कि हम ठंडी गाड़ी से, एयर कंडीशन गाड़ियों से एकदम बाहर निकलते हैं और गर्म हवा जो है वो हमारे लंग्स को, फेफड़ों को मुतासर करती है, तो इसकी एहतियात करनी हमारा फर्ज है। दूसरा, आपने मेंशन किया मुहर्रम का महीना, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त मुहर्रम का महीना जो है ये सिर्फ माह मुहर्रम नहीं, ये गमे रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में आपके खानदान को जो लोगों ने शहीद किया और उसका वाकया जो करबला में पेश हुआ, इसकी हम आपको ये याद होगा कि आपने रेडियो और दूसरे मीडिया पे भी सुना होगा कि रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा के ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत गमजदा हूँ करबला के वाकया में, और फिर वो उन्होंने अपनी एक सौजा को भी मिले और उनको भी ख्वाब में ये कहा कि मैं ये जो खाक मेरे सर में और अस्तफार सबला और ये जो मैं परेशान हूँ, ये मैं करबला के वाकया से परेशान हूँ, और वो गमजदा थे। तो इसलिए ये गम का महीना है, ये सब मुसलमानों का महीना है, ये किसी एक फिरके का महीना नहीं। और फिरके तो जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के पहले ही इस पारे सूरत अल बकरा में मना फरमा दिया है कि आप फिरकों में मत बैठे। दूसरी कौमें जो आपसे पहले जितनी भी कौमें गुजरी हैं, जितने भी 124,000 कम पेश पैगम्बर और रसूल यहाँ पे आए हैं, 355 से ज्यादा रसूल आए, और उन सब ने जो है वो फिरकों में बट गए और फिर अपने दीन से हट गए। इसी तरीके से अब हम भी यही साफ कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो इनसे थोड़ा सा हमें यह भी सोचना चाहिए कि कल जब हम क्यामत वाले दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे की तरफ देखेंगे कि वो उनका झंडा कहाँ लगा हुआ है और उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो हम किस मुंह से जाएंगे कि जब उनके नवासों को, उनकी बीबियों को, उनके छोटे छोटे छह छह माह के बच्चों को हम लोगों ने, हम उस वक्त जो मुसलमान थे, इन्होंने ही शहीद किया था, और वो मुनाफिकीन थे या जिस तरह भी थे, ये तो अल्लाह ने डिसाइड करना। लेकिन जो लोग अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते वो मुर्तद हो जाते हैं, और जो मुर्तद होता है वो काफिर से भी बदतर होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे की तरफ इस नगाह से देख सकेंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं और कल हम क्या, जो आज बोएंगे वो कल काटेंगे। तो लिहाजा मकसद ये है कि हमें गमे हुसैन और गमे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जरूर शामिल होना चाहिए, और आपको पता है कि इस्लाम जिंदा ही होता है करबला के बाद, और आज जो जुल्म हो रहा है दुनिया भर में इसकी वजूहत क्या है, इसी पे तो करबला में ये हुआ था कि आप एक अल्लाह को माने, एक आखिरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखे और उनकी हदीस और उनकी सुन्नत पे कामल रहे। तो राजा साहब, मेरा ख्याल में कि हमारे लोग काफी यहाँ पढ़े लिखे हैं, वो समझदार है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा इस कमांड में रहते हैं कि शायद हमारी दौलत या हमारी चीजें जो है ये हमें बख्शिश में काम आ जाएंगी। उनको चाहिए कि अपने अपने मसाजिद से रिव्यू करें और इस पर सवाल करें, क्योंकि सवाल करना ये इनका हक है। इस्लाम जो है वो इजाजत देता है डिस्कवरी की, और डिस्कवर करो और सवाल हो जवाब करो ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा इल्म आए, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनी सुनाई बात पे अमल करेंगे तो इससे जो है वो आप

0: अपने ऊपर जुल्म करेंगे। जी राजा साहब।
1: शाह साहब आपने बजा फरमाया। शाह साहब हम जिन ममालिक में रहते हैं उन ममालिक में क्या हमें उनके कानून का एहतराम करने में हमें इस्लाम ने मना किया है?
0: नहीं जी, बिल्कुल नहीं किया, बल्कि इस्लाम इतने वाज़ह अल्फाज में कहता है कि अगर आपको उस मुल्क के कोई आयन या वहां के कोई चीज से आपको तंगश है तो आप वहां से हिजरत कर जाएं। ये पूरी दुनिया अल्लाह की है और आप किसी और मुल्क में चले जाए, हिजरत कर जाए, ये हिजरत का पैगाम है। बाज़ों का ये होता है कि जालिम की हुकूमत से जो है वो कुफर के हुकूमत जो है, जो कुफर काफर होते हैं उनकी हुकूमत में अगर सुलह सफाई से आप रह सकते हैं, अमन से रह सकते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर जालिम हुक्मरान है तो आप वहां से हिजरत कर जाने का आपको हुक्म है। तो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर आपने बात किया तो यहाँ पे हमें हर चीज की सहूलत है, लेकिन हमने कुछ चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे कि इस वक्त बहुत हाईलाइट हो रहा है ये जो फुटबॉल का फैन जो कत्ल हुआ है कोपेनहेगन में, इसलिए लांगेब्रो के नीचे जहाँ पे मैंगो फेस्टिवल भी और दूसरे बहुत ज्यादा फेस्टिवल लगते हैं, बल्कि लोग समर में वहां पे बात वगैरह भी करते हैं, वहां पे जो कोई एक हफ्ता पहले नॉर्वे का और एक अफ्रीकन मुल्क का फुटबॉल मैच था और बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, तो उसके अंदर कुछ स्वीडिश लोग जो थे वो बैठे हुए थे और वो नॉर्वे की जीत पे नाराबाजी कर रहे थे, तो वहां पे एक अफ्रीकन जो डनमार्क का रहायशी है और पहले भी वो बहुत सारे केसों में जेल काट चुका है और कत्ल के भी इल्जाम में वो जेल काट चुका है, उसने उस स्वीडिश 32 साल स्वीडिश को जो है वो इतना मारा और उसके साथी को कि वो जो 32 साल था वो जिंदगी खो बैठा। तो हम सब लोग मैंने आज भी और कल भी लिखा है कि भाई हम सब पाकिस्तानी हम लोग कम्युनिटी जो है यहाँ पे हम उनके बराबर के गम में शरीक हैं और हमें ये नहीं चाहिए ऐसे करना, लेकिन ये इसके पीछे जो कवानीन बनाए गए हैं, जो इसके पीछे काले कवानीन हैं उनको खत्म करना चाहिए, इसके ऊपर डायलॉग होना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट लुक लास्ट मूसन और मॉडर्न स्मिथ की जो अपनी
1: शाह साहब एक सवाल उठता है कि कोई देखे ना जहाँ जुर्म होगा वहां तो कानून शाह साहब हरकत में आएगा ना, जब कानून हरकत में आता है तो उसे तो हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कहते ना।
0: ये ठीक है, लेकिन वो आदमी जो है वो अभी तक यहाँ पे आजाद है और पुलिस से कहा है कि अगर आप इन लोगों को देखे इसको
1: देखे। लेकिन शाह साहब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं हमेशा आप कानून की बात करते हैं, यहाँ तो कानून का एहतराम किया जाता है, जो भी कानून की ईजाद में आ जाता है उसका बचना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी सी डील मिल जाती है। तो शाह साहब मौसम की तरफ आते हैं, अपने सियासत की तरफ आते हैं। शाह साहब आप बताएं, आपका ज़िंदगी का बहुत तजर्बा है, क्या सियासत जो है अपने नाम के लिए की जाती है या सियासत लोगों के लिए बेहतरी के लिए की जाती है?
0: ये अपने और अपनी फैमिली के लिए यहाँ सियासत की जाती है, यहाँ लोगों के लिए अवाम के लिए नहीं। यहाँ पे आप वोट लेते हैं दोस्ती यारी के नाम पे और फैमिली बैकग्राउंड के नाम पे, लेकिन आप जैसे कि ये जो वाकया मैं जिसको बयान कर रहा था ये पांच मंजर जो है ये इसी चीज की हमारी नेगलेसी की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर आ गए। आप ये देखेंगे जो मैंने आज उनको वाजह तौर पे लिखा है, मैंने आपको कापियां भी उसकी भेजी है कि देखे अगर आपने ये कानून जो है अगर ये चेंज ना किए होते तो आज हमारे पढ़े लिखे फैमिलीज हमारी जो हम लोग यहाँ सेटल्ड हैं हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो बजाय दूसरे मुल्कों में दूसरी जगह पे या पाकिस्तान में जिलों पार होने के अगर वो यहाँ पे आ जाते तो आज बेहतर तरीके से ये मुल्क चलता, लेकिन आप लोगों ने दूसरे मुल्कों का मजाक उड़ाया कि ये
1: तो
0: मुसलमान।
1: इस पर कितने सियासतदान लिख रहे हैं जो बात आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इस पर कितने सियासतदान कम्यून के मेंबर, रीजन के मेंबर, पार्लियामेंट के मेंबर कितने लिख रहे हैं? तो शाह साहब जब कानून सख्त होते हैं तो फिर पार्टियां उस चीज को उठाती हैं, लोग उनकी जो फेवर में होते हैं उनकी वोटों की तादाद बढ़ जाती है, कम्यून में बढ़ जाती है, پارلیمنٹ میں بڑھ جاتی ہے، یہاں تو جمہوریت ہے، جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ اپنے قانون منظور کروا لے گا۔
0: دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ مجھے اپنے سیاستدانوں سے، جو ینگ سیاستدان ہے، بے شک وہ مجھے جو برا بلا جو مرضی کہے، مجھ سے ان سے یہ امید نہیں کہ وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اخباروں میں لکھ دیا، ہم نے فلانی جگہ کر دیا۔ کیا جو الیکٹڈ ہیں، کیا انہوں نے ابھی تک کوئی اس طرح کی کانفرنس یا اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس اپنی زبان میں یا اپنے ریڈیو پہ کی ہے؟ کوئی آپ کے ریڈیو پہ ایک ہفتہ ہو گیا اس طرح کے واقعات، بلکہ اس سے پہلے کے جو قانون سخت بنے ہیں، جو ڈیپورٹیشن کے قانون بنے ہیں کہ آپ غیر ملکیوں کو تھوڑی سی زراعت پہ بات، کیا انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہے؟ اب یہ کہنا کہ جی ہمارے کوئی الیکٹڈ کونسلر نہیں، ہمارے ریجون میں بھی الیکٹڈ کونسلر ہیں، ہمارے کوپنہیگن میں بھی الیکٹڈ کونسلر ہیں، کیا ان لوگوں نے آ کے، ان سیاستدانوں نے کوئی ایسی بات یا ایسے لا فورسز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے؟ اور کیا انہوں نے انویٹیشن آپ کو یا ہم لوگوں یا دوسرے جو سیاستدان ہیں ان کو بلایا، یا ایسے سوشل ورکرز کو بلایا اس گیدرنگ کے اندر جہاں ڈینش بیٹھے ہو، مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوں، ڈینش فلکے پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوں، ماڈریٹ کے بیٹھے ہوں، ڈنمارک ڈیموکریٹس کے لوگ بیٹھے ہوں، سوشل ڈیموکریٹ کے سب پارٹی کے لوگ نمائندے بیٹھے ہوں، اور ان کے سامنے اپنی فورسلے بھیجے، ان کے سامنے اپنا نقطہ واضح کرے؟ کیا کوئی ہے ایسی ہمت کرنے والا؟ حالانکہ یہاں پہ ان لوگوں کو ہال فری ملتے ہیں، ان کو ہر جگہ فری ہال ملتے ہیں، جیسے کہ کل انہوں نے مینگو فیسٹیول لگایا تھا، ایسی جگہ ان کو فری ملتی ہے، وہاں پہ یہ لوگوں کو اچھے موسم میں بلا کر گیدرنگ کر سکتے ہیں اور لوگوں کی رائے لے سکتے ہیں کہ ہم میں کون سی فالٹس ہیں وہ آپ گلا کریں، اور ہم میں جو تم میں جو فالٹس ہیں، آپ کے قانون میں جو فالٹس ہیں، اس کے اوپر بہت اچھا ہو تو پھر بات ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ فلانا وزیر میرا یار ہے، فلانا میرے علاقے کا ہے، فلانا میں اس سے بہت بات کرتا ہوں، میں فلانے کو جاتا ہوں، میں فلانے کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، یہ سب غلط باتیں، یہ رومرز ہیں، یہ صرف اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ جو اصل اگر یہ چیزیں واضح طور پہ پہنچ جاتی کہ یہاں کے قانون میں کیا کیا شکے ہیں، یہاں کے قانون جو بنائے گئے ہیں وہ کتنے غلط ہیں، تو آج اس طرح کی چیزیں ہمیں سننے میں نہ آتی۔ آج جو اسلام مخالف لوگ ہیں، جو اسلام کو سرے ہم برا بلا کہہ رہے ہیں، بلکہ بینرز پہ لکھ لکھ کے برا کہہ رہے ہیں، تو میں شرمندہ ہوں اپنے ینگسٹر سے کہ کیا انہوں نے کوئی باتیں کی نہیں۔ ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر، دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، وہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، وہ دوسرے ممالک کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہماری اب چوتھی جنریشن، راجہ صاحب پہلی دوسری تیسری نہیں، اب چوتھی جنریشن تیار ہو رہی ہے اس ملک کے اندر ہماری، اور اس جنریشن کے لیے کیا ہم نے تیسری اور چوتھی جنریشن کے لیے کچھ کیا؟ نہیں، ہم نے ایک چیز چھوڑ دی ہے کہ ہمارے بچے بہت پڑھ گئے ہیں، وہ ڈینش بولتے ہیں، کیا ان کو ڈینش قوانین کا پتا ہے؟ کیا ان کو ہماری پرابلمز کا پتا ہے کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں؟ کیا ان کو اس بات کا خیال ہے کہ ہماری بوڑھی مائیں، بیوہ مائیں یا دوسرے جو ہیں ہینڈیکیپ فرق ہیں، ان کی
1: ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے قانون کو ہر وقت چیلنج کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی عادات کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ آپ کافی سینئر ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جب آپ جہازوں پر سفر کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے، تو آپ کو امیگریشن میں کتنی سہولیات تھی، شاپنگ سینٹر پہ کتنی سہولیات تھی، آپ کی چیکنگ بالکل نارمل ہوتی تھی۔ اس وقت ایک زمانہ تھا آپ کے پاسپورٹ پہ بچے لکھے ہوتے تھے، تو آپ بغیر پاسپورٹ کے بچوں کو جو ہے نا اپنے پاسپورٹ پر ایک دوسرے ملک میں لے جا سکتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو شاہ صاحب، جب ہم نے غلط کام کیے، قانون کو جگہ جگہ توڑا، تو پھر سختیاں ہوں گی، تو اب ہر چیز پر ہم چیختے ہیں اور ہر چیز کو ہم چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
0: یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ جھوٹ کی علامت جو ہے نا، جھوٹ بولنا، یہ شیطانی وسوسے سے پیدا کرنا، غبیت کرنا، اپنے آپ کو اونچا پیدا کرنا، اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ ہم نے اپنی عورتوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا، ہم نے ان کو یہاں کے قوانین نہیں سکھلائے، ہم نے یہاں پہ کوئی ایسی تھنک ٹینک یا ایسی کمیٹیاں نہیں بنائی جو اس طرح کے، جو میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو ان کو کمپرومائز کیسے کرایا جائے، ان کو حالات سے کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہندو بھی رہ رہے ہیں، دوسرے قومیں بھی رہ رہی ہیں، उनकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं जितनी हम मुसलमानों ने यहाँ पे क्रिएट की है। और सबसे ज्यादा जो है चंद एक मुसलमान, ये किस वजह से, ये कानून की वजह से, कानून के ऊपर किससे बोलना है, ये उनसे बोल, उन्होंने बोलना है जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं कि ये लोग जाके इन इन खामियों के ऊपर, जो कानून के अंदर खामी है उनके ऊपर बोलेंगे। लेकिन वो यस सर करने वाली कौम हमें उन पे एतबार कर लेते हैं, और उन्हीं के एतबार में आज जो हम जुलसे बैठे हुए हैं, आज जो हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमारे फैमिलीज को यहाँ इकट्ठे करने पे हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, देखिए जो नए फ्लूटिंग आ रही है, जो नए यहाँ पे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, उनको और उनकी फैमिलीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डेनमार्क के अंदर सेटल होने में। लेकिन हम लोग जो है जो यहाँ पे
1: बात आप कर रहे थे गैदरिंग की, शाह साहब जो प्रॉब्लम्स की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, तो शाह साहब एक नेचुरल गैदरिंग होती है, जो भी फेस्टिवल होते हैं गैदरिंग के लिए होते हैं, तो हम क्यों नहीं सियासतदानों को बुलाते और आप वाली बात, वहाँ डिबेट होनी चाहिए, अपने मसाइल डिस्कस होने चाहिए, जमहूरी तरीके से होने चाहिए, लड़ाई की शक्ल में नहीं होने चाहिए, प्यार मोहब्बत की शक्ल में होने चाहिए। शाह साहब ये काम हम करना नहीं चाहते, हमें फिक्र होती है पाकिस्तान की सियासत की कि मैं बड़ा जो है वो 30 मार खान हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो शाह साहब यहाँ रहते हुए इन मुल्कों की हम सियासत करते नहीं हैं, शाह साहब हम सिर्फ डिमांड डिमांड डिमांड डिमांड डिमांड, उसके अलावा हमारे पास कुछ है शाह साहब?
0: जी बिल्कुल आपने सही बात की है। कल मैं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ गया हुआ था, छोटे आए हुए थे सारे, तो उनको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, तो उनको साथ लेके गया था मैं। लेकिन मुझे अफसोस पड़ा हुआ कि वहां पे भी जैसे आपने बात की कुछ सियासतदान वहां पे घूम फिर रहे थे, लेकिन वो इस तरह घूम फिर रहे थे कि सिर्फ फोटो सेशन की नजर में, कोई कोई किसी को अपने ख्यालात के बारे में ही बता रहा था, कोई किसी को कोई अपने ये जो याददाश्त होती है कि मैं आपके लिए क्या करूंगा क्या नहीं, वो नहीं बता रहे थे, कोई ऐसे पंफलेट नहीं तकसीम किए जा रहे थे कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी चीज की भी, तो रिहाइश की प्रॉब्लम है या आपको बच्चों की प्रॉब्लम है या आपको स्कूल मैटर्स या किसी चीज की भी आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा जरूरत है तो आए हम आपसे खुल के बात करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि ये लोग सिर्फ फोटो सेशन, चंद एक बंदों के साथ खड़े होकर फोटो सेशन, किसी को सलाम करने में भी बड़ी रख रखाव रख रहे थे, दूर से हेलो करके जा रहे थे। तो ये एक एक वो अकड़पन है जो अपने आप को चदराहट में रखता है। ये इसीलिए लोगों के लोग जो हैं, मैं आपको ये एक चीज वाजह कर रहा हूँ कि मुझे जो नेक्स्ट इलेक्शन नजर आ रहे हैं उसमें हमारे पाकिस्तानी मेजोरिटी जो है वो मेरा ख्याल में डेंचो को वोट डालेंगे या वो दूसरे किसी और बंदे को, नेशनैलिटी को डाल देंगे, अपने लोगों को वो वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि अब 55 साल से ऊपर हमने इनको आजमा लिया है, ये सिवाय झूठ और अपने खानदानी रवायात को कायम रखने के अलावा इनके अंदर कोई चीज नहीं। ये मकर करते हैं और मकर करने वाले लोग जो होते हैं उनको, उनके ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं आती। आप खादम हैं, आपने वोट लिया, आपने आईजी दिखाई, आप लोगों ने अपना पैसा खर्च किया हर एक चीज की और आप इलेक्ट हुए, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों से आकर बात करें, अपनी चौधार ना करें कि मैं कौंसलर, कौंसलर इज नथिंग। आपकी जो वैल्यूज हैं वो हमें पता है, आपको घोड़े बात नहीं करने देते, आप कालों के सामने अकड़ कर चलते हैं। माजद के साथ मैं इनके इनसे नहीं डरता क्योंकि मैं इनको पीछे से जानता हूं कि ये क्या है, मैं भी क्या था। हम लोग झूठ झूठ का सहारा ले रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी जो खबीयत है, हम जो बातें करते हैं एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये जो आज हालात पैदा हो गए हैं ये इतने गंभीर हैं कि हमारे साथियों को नहीं पता। आप ये देखिए कि हमने 2017 से डेली बेसिस पे, एक नहीं कि वीकली हम बात करते हो, हमने डेली बेसिस पे यहाँ कहा था कि ये जो उबर है इसको मत तंग करो, आने दो, अपने वोमेनशिप बचाओ, ये पुराना कानून जो है टैक्सियों का इसको बचाओ। तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा जी शाह साहब पागल है, ये अपना क्या नाम है राजा गफूर पागल है जो शाह साहब को हर वक्त रेडियो पे ले आता है ये बातें करता है। अब 500-600 टैक्सी जो है ये वियतनाम की आके यहाँ पे खड़ी हो गई है, अब वो जो है वो ड्राइवर भर्ती कर रहे हैं, वो ड्राइवर चलाएंगे, वॉरमैनशिप किधर गई, कहाँ गए आपकी वॉरमैन, जो एक सेल्सकेप रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी, क्यों कि अब लोगों ने, लोगों को अपनी परमानेंट तनख्वाह मिलेगी, वो उससे ज्यादा फायदा उठाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं, टेस्ला ने और चाइनीज ने ऐसी गाड़ियां डेनमार्क में और यूरोप में भेज दी हैं कि जो बगैर ड्राइवर के आपको मुहैया होंगी, आपको विद इन नो लिमिट, कोई टाइम नहीं होगा तो आपके घर के सामने टैक्सी आ जाएगी, आपके लिए सेफ होगी, आप जो उसको आपने पहले ही एड्रेस फीड कर दिया होगा, वो आपको लेके आपके जहां आपने जाना है वहां आपको पहुंचा देगी, वो आपको ड्राइवर से ज्यादा सेफ आप उसमें इसलिए होंगे कि वो आपको अनवाइंड यानी कि उल्टे सीधे रास्तों में लेके नहीं जाएंगे, आपको ड्राइवर के साथ तकरार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने पेमेंट कर दी, जो पेमेंट आपने कर दी हुई है उसी से बेशक वहां पे गाड़ी आसान चल रही है, तेज चल रही है, ट्रैफिक बेशुमार है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी कि अगर आपने 150 करोड़ दिया है तो वो 150 करोड़ में ही आपको उस जगह पे पहुंचाएगी। तो अब भाई ये नुकसान किसका हुआ, ये नुकसान उन लोगों ने करवाया है कि जिनके जेहन में ये बात नहीं आ रही थी कि भाई ये फ्यूचर हमारा कितना डिस्टर्ब होगा, हम ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, हमने इंसानियत के यहाँ पे लोगों को जो काम करके ये कर रहे थे उनके लिए क्या कर दिया। अब वो कंपनी जो है वो 3,000 के करीब जो है वो ड्राइवर जो रखने जा रही है, और मेरा तो यंगस्टर से यही मशवरा है कि अपनी गाड़ियां दे दें और इस तरह काम करें, कम से कम आपको फिर ये पैसे मिलेंगे, आपको बीमारी के पैसे मिलेंगे, आपको इंश्योरेंस मिलेगी, आपकी इंश्योरेंस होगी, आपके सब कुछ अखराजात जो वो कंपनी उठाएगी, और आप मजे से 2 महीने की छुट्टियां करें, पाकिस्तान में जाएं, बच्चों के साथ अमेरिका में जाएं, दुनिया भर में जाएं, आप लूट मार करें, जो मर्जी करें, वो आपके लिए फायदा। लेकिन ये अच्छा है, लेकिन जब ये दूसरी बजाय ड्राइवर की गाड़ियां भी आ जाएंगी आपके मुकाबले में, तो आप अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप 2 डिफरेंट कल्चर में रह रहे हैं, आप डेनिश कल्चर में रह रहे हैं और पाकिस्तानी कल्चर में रह रहे हैं, आपने दोनों कल्चरों का जो है वो को डिफेंस करना है, और ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो राजा साहब, ये जितनी भी चीजें हैं ये कम्यूनों में डिस्कस करने वाली है कि हमारे जो यहाँ के जो हमारे
1: सवाल है, आप माशाल्लाह हर चीज को समझते हैं। शाह साहब, फल खाए जाते हैं, फल अच्छे होते हैं, बस फल बड़े पॉपुलर होते हैं, डेनमार्क में भी बहुत सारी दुनिया का हर फल यहाँ मिलता है, तो हर दुकान पे मिलता है, हर मार्केट में मिलता है, तो शाह साहब मेले बड़ी अच्छी चीज़ है, गैदरिंग होनी चाहिए, आउटिंग होनी चाहिए, लेकिन मेलों का नाम जो है वो जगह मुफ्त ली जाए और वहाँ फंड रेजिंग का काम किया जाए, और ये भी एक सवालिया निशान है। तो शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, दुकानों में ख़रीदा भी जाता है, जगह जहाँ भी जाते हैं ख़रीदते हैं, लेकिन शाह साहब ये कोई मुकद्दस फल है?
0: मैं इस चीज को बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि अगर आपने फंड रेजिंग करनी है, कुछ करना है, तो आपके लिए जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर ऐसे कानून हैं जो आपको इजाजत देते हैं। और इसी तरीके से हमने जब यहाँ पे शुरू में मुख्तलिफ कल्चर सेंटर या मसाजिद बनाई तो गवर्नमेंट ने लोगों को सपोर्ट किया, जगह दी, तो यहाँ पे तो हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के जरिए, जहाँ आप टैक्स पेयर हैं और आप सही तरीके से रह रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप अप्लाई करें, आप चर्च मिनिस्ट्री को, कल्चर मिनिस्ट्री को आप अप्लाई करें, आपको हर चीज जो है बाय लॉ यहाँ पे मिल जाती है और ये देते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या उसके अंदर मेरा नाम होगा या नहीं होगा, ये मसला सबसे बड़ा राजा साहब, कि उसके अंदर क्या ये तो कीर्षा गएगा कल्चर सेंटर है, या इसके अंदर कौन बड़ा बैठा हुआ है, क्या इसके अंदर तो कीर्षा का हाथ है या नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है। आप देखेंगे यहाँ पे 7 मस्जिदों की यूनियन बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे DMU बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे DMC बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे। तो जब आप कुछ कर नहीं रहे और यहाँ पे इस्लाम के बारे में और दूसरे कल्चर्स के बारे में, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको जब कानून का पता नहीं तो आप कानून वालों से बात करें, ये नहीं कि आपके बच्चे पढ़ लिखे हैं जी, वो जी हमसे ज्यादा तो कौन नहीं जानता। बात यह है कि यहाँ सब ब्रांचों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबके बच्चे जो हैं वो फलके थिंग में नहीं बैठे हुए, सबके बच्चे जो हैं वो फिजकेरी उवेल जो हैं फलके थिंग के वहां नहीं बैठे, वहां सबके बच्चे जो हैं वो वकील नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई चीज होती है तो वो मुख्तलिफ वकीलों के पास जाना पड़ता है। अभी आप एक कोई आपके प्रॉब्लम आ जाती है तो आप एक हर वकील के पास नहीं जा सकते, आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम है आपने उस वकील को ढूंढना है और उस काबिलियत के वकील को ढूंढना है जो आपका मसला हल कर सके। तो यहाँ पे जो मसाइल हैं हमने इकट्ठे कर लिए हैं, इसको जब तक आप पब्लिक को इकट्ठा करके उनके मीनिंग्स नहीं लेंगे, बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर फसाद किए, बगैर कबियत किए, आप इन चीजों को समझ नहीं सकेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को जो है वो रहने की इजाजत हो जाएगी, बाकी जितने भी आगे पीछे घूमने फिरने वाले लोग हैं इनको ये किसी ना किसी बहाने से ये बाहर आउट कर देंगे। अगर आप आज की अखबारें देखें, अगर आप देखें तो अब मॉडर्न मैसेज में जो है डेथ फलके पार्टी का वो कह रहा है कि उलेनी को तो हर सूरत बाहर निकलना है, तो हो सकता है कि मैं जो है इससे बात करूं लास्ट यूके से और मैं वजीर आजम बन जाऊं इस मुल्क का, वो अपने ख्यालात का हजार कर रहा है। पहले वो चाहे यही कहता था कि मैं इसको इनको खा जाऊंगा, लेकिन अब वो कहता है कि मैं इनके साथ मिलके तो मैं ऐसी हुकूमत बनाऊं जिससे फॉरनर्स को इस मुल्क में इतनी तकलीफ दी जाए कि वो खुद ही छोड़ के चले जाए, ना छोड़ के जाए तो हम उनको बाहर कर देंगे इस मुल्क से। तो राजा साहब हालात जो है इसकी जिम्मेदारी हमारे अपने सियासतदानों पे हो रही है, हमें वो सुन रहे होंगे, उनको तकलीफ होगी कि शाह साहब क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ये उनका हक बनता है, ये उनके उनका मंशूर है, ये उनके उनका फराइज है, उनके फराइज में ये शामिल है कि वो आए बाहर निकले और आकर अवाम जिनसे वो, और जी मेरी फैमिली जी मैं जर्मनी में छुट्टियां गुजारने जा रहा हूँ, जी मैं लाहौर में छुट्टियां गुजारने जा रहा हूँ, मैं फलाने, भाई क्या जब वोट डाले थे तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें वोट डाले थे, तुम्हें तो लोगों ने वोट डाले थे, तो तुम उन लोगों की प्रॉब्लम को पहले सुनो, उनका मसाइल हल करो, उनके लिए जो इस वक्त इतने सख्त कानून बन चुके हैं।
1: शाह
0: और
1: साहब,
0: वो
1: शाह साहब आपकी आखिरी बात करते हैं फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको लेंगे। शाह साहब यहाँ लोग कहते हैं ये बातें लोग करते रहते हैं इसी तरह, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सियासतदान का काम है सियासतदान सियासत करना, जब यहाँ की सियासत जो है वो की ही नहीं जाती, बंद कमरों में खाली गप्पे मारी जाती हैं और लेक्चर झाड़े जाते हैं, तो शाह साहब इससे कभी भी तब्दीली नहीं होगी। शाह साहब आप बहुत शुक्रिया, आपको दूसरे हिस्से में लेंगे आपको
0: इंशाअल्लाह।
1: समझ नाज़रीन ये थे शाह साहब, इनकी आप बात सुन रहे थे, अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
3: स्टूडियो माइक्रोफोन आपकी आवाज 92.9 संडे ब्रेकिंग न्यूज। Live this Sunday from 12:30 to 2 p.m. Our distinguished guests in the special live program. Small Diamond Shah Sahib, Deputy Mayor and current City Councillor Small Diamond Obeidur Rehman Qureshi Sahib, Muslim Cultural Institute, renowned social leader and social worker in this special conversation. There will be a lively discussion on the importance of the Karbala Martyrs Conference, the message of the great sacrifices of Hazrat Imam Hussein, RA, and the Karbala martyrs, and our collective and moral responsibilities in today's society. Qureshi Sahib is a well-known name for his service to the suffering humanity, social welfare and public good. The program will also highlight humanity, unity, service to the people and social responsibilities. Sunday 12:30 time. 12:30 p.m. to 1300 to 14 live on Apki Awaz 92 share and let us know your opinion.
4: سامعین کرام FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا، دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جس طرح آپ نے صبح انٹرو میں بتایا تھا، چند لمحے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے. عبید الرحمان قریشی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سوشل ورکر ہیں اور آپ ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں، بہت حوالوں سے یہ کام کرتے ہیں، مسجد کی خدمت بھی کرتے ہیں، کمیٹی میں بھی شامل ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہارڈ ورک کرتے ہیں. گو کہ یہ صحت کے لحاظ سے بھی ماشاء اللہ کافی بیماریوں پہ بھی مبتلا ہیں، سٹنٹ بھی ان کو پڑے ہوئے ہیں، شوگر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں شہادت امام حسین کانفرنس مدینہ مکی مسجد میں منعقد ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، علماء نے شرکت کی، اور بہت ہی سمپل اور سادہ پروگرام تھا اور کسی کو کوئی بوریت محسوس نہیں ہوئی. بہت اچھا پروگرام تھا، سب نے اس کی تعریف کی، ہم نے بھی اس کو انالائز کیا، لوگوں سے پوچھا ایک ایسا پروگرام تھا، سب نے اس پروگرام کی تعریف کی. تو ہم نے کہا کیوں نہ انتظامیہ میں عبید الرحمان قریشی صاحب پیش تھے، ان سے جاننے کی کوشش کریں. عبید صاحب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جی بہت شکریہ جناب، سارے سامعین کو آپ کو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. عبید صاحب، میں نے چھوٹی سی امید باندھی ہے، بڑی اچھی شدہ ایک کربلا کانفرنس جو آپ نے منعقد کی. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، مسجد کی پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
1: جی بہت شکریہ جناب، آپ نے تمید نہیں باندھی بلکہ تقریباً ساری بات ہی بتا دی. چلیں، اللہ خیر کرے، اللہ پاک قبول کرے جس کو. کوششیں جاری رہتی ہیں. ہمارے سال میں تین پروگرام، جو عید میلاد النبی، شہادت کانفرنس اور معراج شریف کا جو ہوتا ہے، تو بڑے ذوق شوق سے ہم اس کو مناتے ہیں اور اچھی تیاری کے ساتھ، اور لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شامل ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جی، بس یہ کوشش ہے. اور یہ ہمارے ایسے مواقع ہیں، خاص کر شہادت امام عالی مقام کی، جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہم سب کو یاد رہنا چاہیے کہ ان کی اتنی لازوال قربانی جو ہے. اور میں کیا سبھی کہتے ہیں کہ آج جو اسلام زندہ ہے وہ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے اور جو چل رہا ہے سلسلہ. تو اللہ پاک ہم سب کو شوق اور شعور دے اور ان کی اس قربانی پہ ہدایت حاصل کرنے کی توفیق حاصل کرے. میں انشاءاللہ ہم سب سے امید کرتا ہوں. اور اس دفعہ تو ماشاءاللہ کافی ذوق شوق سے منایا گیا ساری مساجد میں. یہاں البرس لون، عیسائی عامہ میں، ہمارے یہاں مناج القرآن، سب جگہ پہ اپنے اپنے مختلف دنوں میں انہوں نے یہ پروگرام منایا. اور ہمارے جو شیعہ بھائی مسلمان ہیں، انہوں نے بڑے احسن طریقے سے پورا محرم کا مہینہ جو ہے وہ اپنے پروگرام کرتے رہے، اور خاص کر ایک بڑے جلوس کا بھی اہتمام کیا. اللہ پاک سب کو اس کا اجر دے.
0: عبید صاحب، ساری چیزیں ساتھ ساتھ، یہ کانفرنسیں بھی چل رہی ہیں، گرمی کا موسم ہے، ساتھ ساتھ محرم میں فیسٹیول بھی چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ انٹیگریٹ ہو چکے ہیں.
1: جی جی، اللہ خیر کرے، انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور خاص کر جو ہماری تیسری جنریشن ہے، یہ بھی بڑے ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نوجوان جو ہے شامل ہوتے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں. اور اچھا ہے، سب طرف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اور ہمارے اپنے جو مذہبی اور ثقافتی جو چیزیں ہیں، ان کو قائم رکھنا چاہیے اور چلنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ، ورنہ تو سلسلہ جو ہے وہ ہم سب بھول جائیں گے کہ ہم کون ہیں اور کیا تھے اور کیا ہو رہا ہے آنے والے. تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. اپنی مدنی مسجد میں آپ بھی کبھی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں سارا پروگرام. ماشاءاللہ یہ سب لوگوں کے تعاون سے اللہ کا بڑا کرم. اور کہاں سے چلے تھے ہم، اور اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت اور کھلی مسجد بنی ہے، مینار بھی بن گئے ہیں اب. اور ہم نے وہ جو ساتھ پروجیکٹ بنایا ہے، بہت ہی مستقبل کے لیے بڑا اچھا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو ہم ذرا ہیں، اس کے جو لونز ہیں وہ ادا کرنے ہیں، لیکن کچھ سالوں بعد انشاءاللہ خود کفیل ہو جائیں گے. اور ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اس کی جو انکم ہوگی اس سے مسجد کے، اور باقی جو معاملات ہیں ہم آسانی سے کر لیں گے. لوگوں سے پھر چندے کی تکلیف ان کو نہیں دیں گے کہ ہمیں چندہ دیں اور اس طرح کریں. انشاءاللہ خیر ہوگی، इरादे तो हमारे बड़े अच्छे हैं, बाकी अल्लाह इसमें बरकत डाले और आप लोग जो सारे बहन भाई हमारे तावन करने वाले वो लगे रहे, क्योंकि ये एक ऐसा सदका जारी है और यही जो है ना आगे काम आने वाली चीजें। हम तो इतने इतने महंगे खाने पीने और सारे आराम ऐशी कर लेते हैं, लेकिन ये जो सदका है ये काम आने वाला है, वो बाकी चीजें तो यही रह जाएगी सारा कुछ।
0: वैसा साहब अक्सर जिक्र होता रहता है कि ज़ाहिर है मसाजिद के कल्चर सेंटर के अदारों के अखराजात ढेर अखराजात होते हैं, इंतज़ामी अखराजात भी होते हैं और भी बहुत सारे मामला चलते रहते हैं और बिजली पानी के भी जो है अखराजात चलते रहते हैं। ज़ाहिर है वज़ू के लिए जगह बनाई जाती हैं, सहूलियात दी जाती हैं, टॉयलेट बनाए जाते हैं, सहूलियात दी जाती हैं, लेकिन कुछ हमारी या लोगों की जिम्मेदारियां भी होती हैं ना कि ये जितना हम बेदर्दी से पानी को इस्तेमाल करते हैं, बिजली को इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी अच्छे खासे अखराजात हैं। अगर साल में देखा जाए, एक दिन के लिए तो चलो बंदा कहता नहीं जी इतने हो गए, लेकिन अगर साल में जमा किया जाए तो ये अच्छी खासे जो है अखराजात बन सकते हैं। उसमें अगर हम 50% बचत की भी कोशिश करें तो इससे भी मस्जिद को या अदारों को या कल्चर सेंटर्स को बहुत फ़ायदा मिल सकता है।
1: जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं जी। जहाँ तक अखराजात के मामले हैं तो आप सुन के हैरान होंगे कि हमारा खर्चा तकरीबन तकरीबन 2.5 से 2.5 लाख महीने का है इस मस्जिद का। इसमें इसका प्रॉपर्टी टैक्स जो सबसे बड़ा है, उसके बाद वाम का, पानी का, बिजली का, फिर कुछ जो खिदमत हमारे उलमा हजरात कर रहे हैं उनकी जो खिदमत की जाती है, तो ये सारे मिला जुला के काफी तकरीबन पहुंच जाता है। तकरीबन जो है मेरा जो अंदाजा 2.25 लाख, 2.30 लाख, इससे भी ज्यादा कभी हो जाता है, डिपेंड करता है किस तरह। तो हमारे बाकी जो जो जरूरी अखराजात हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, उसमें तो बचत नहीं की जा सकती। और ये जो जिस तरह आपने खुद ही बताया कि पानी है और बिजली है और मसलन जितने भी हैं थोड़ा सा सफाई वगैरह में मदद है, अच्छे तरीके से लोग जिस तरह की अच्छी चीज बनी है अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करें तो हम उनके बड़े मशकूर रहते हैं, हमेशा लोग करते हैं तावन इस बात में भी। लेकिन हैं कुछ ऐसे जो कि बेहतियाती करते हैं, समझते हैं कि शायद चलें जी कोई बात नहीं, कौन सामने बिल देना है, लेकिन अल्लाह साहब को हदायत दे। और मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू नहीं है, लोग समझते हैं आजकल माशाल्लाह शोर वाले हैं और वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यही बात है अखराजात की, वो जो है वो तो है ही, तो वो कुछ अल्लाह खुश रखे, लोग जो है तावन करते हैं और उनका कबूल करे, तो चल रहा है सिलसिला। बहरहाल
0: उबैद साहब,
1: इंशाल्लाह
0: काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि अब जो तब्दीली, एक नई तब्दीली आई है, लोग बात करते थे, अब डेनिश ज़बान में बच्चे जो हैं वो तकारीर भी करते हैं, खुतबा भी देते हैं, तो ये काफ़ी तब्दीली आ चुकी है, लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं।
1: जी बिल्कुल जी, ये खासकर जो अपने नौजवान नस्ल है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि कुछ जो हमारे दूसरे उलमा पाकिस्तान से आए हुए हैं वो इतना डैनिश में महारत नहीं रखते या अबूर नहीं कर रखते, तो फिर बड़ा जरूरी है कि नई नस्ल को जो उनकी समझ आने वाली अच्छी जुबान है उसी में समझाया जाए उनको, उन बताया जाए कि किस तरह है। असल में बस थोड़ा सा वक्त कम होता है, मेरी इस प्रोग्राम की विरासत से एक गुजारिश जरूर होगी कि जो बहन भाई सुन रहे हैं वो बराए मेहरबानी अगर वक्त पे जरा तशरीफ ले आया करें, मतलब खुतबा। असल में जुमा जो है वो फर्जों की नमाज के साथ नहीं अटैच, इसका साथ बाकायदा जो खुतबा है वो भी जरूरी है सुनना, जुमा शुरू ही उस वक्त से हो जाता, तो जरा वक्त पे तशरीफ ले। मसलन जिस तरह आजकल 2:30 पे जमात खड़ी होती है, तो अगर और वो इमाम साहब अपनी तकरीर शुरू करते हैं तकरीबन 1:45 के, तो अगर उस वक्त तक लोग आ जाएं, क्योंकि मैं भी कभी लेट हो जाता हूँ, ये नहीं कह सकता ठीक है बंदे कोई काम से आता है, कोई किसी और जरूरी जगह से मजबूरी से या वक्त नहीं मिलता, लेकिन जिनके पास वक्त है प्लीज अगर वो पहले तशरीफ ले आए तो कुछ उनको समझ भी आए और सुन भी सकें, बिल्कुल आखिर में आके तो फिर तो फायदा कोई नहीं है उसका, जो मैं वाले दिन का खाली नमाज का ही है
0: उबैद
1: आपको
0: साहब,
1: मिलता
0: ये
1: है।
0: जो आखिर में आप वाली बात सही है, आई एग्री करते हैं सारे लोग इस बात से, लेकिन ये पार्किंग का जो सिस्टम है, अच्छी खासी जगह है आप लोगों के पास, लेकिन हर बंदा चाहता है कि मैं अंदर ही पार्क करूं और बिल्कुल मस्जिद के अंदर ही जाकर पार्क करूं।
1: जी बिल्कुल जी, ये बड़ा मसला है और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने लोगों को आजकल इतना नवाजा हुआ है कि हर गाड़ी में, मैं तो कहूंगा एक गाड़ी तो जरूरी, लेकिन कईयों में तो दो दो तीन तीन है, तो कभी कभी मैं मजाक करता हूँ, अगर हमें फेले पार्किंग भी मिल जाए तो हमारे लिए पार्किंग की जगह वो भी कम होगी, तो ये एक मसला है। और सब मस्जिद में अभी हमारी ये मराकुन भाइयों की मस्जिद, इमाम मालिक, शायद आप गए होंगे कभी गामल क्यू लैंड वाई पे, इतनी बड़ी पार्किंग है उनके पास, लेकिन फिर भी मसला जो है ना वो रहता ही। तो गाड़ियों वाले हजरात से बस यही अपील है कि बराए मेहरबानी जरा अगर वक्त पे आए तो उनको जगह मिल जाएगी, और फिर अगर बाहर भी खड़ी करें तो फिर भी वो आ सकते हैं। तो बस ये जरा जबरदस्ती ना किया करें कि गलत पार्किंग, क्योंकि हमारे साथ हमसाए भी हैं, उन्होंने भी गुजरना होता है, उनकी गाड़ी ने भी, आजकल उनका काम चल रहा है, वो कुछ जो काम वाली ट्रक वगैरह दूसरे तीसरे आते हैं, तो शिकायत तो है इसकी बड़ी, लेकिन अब हम ऐलान भी कर करके थक चुके हैं, लोगों को समझाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला खैर करेगा, बस किसी वक्त समझ आ जाएगी कि कैसे। अभी इस वक्त कोपनहेगन की मस्जिदों में अगर जो है तो ये विल बी मराकन भाइयों की पार्किंग ज्यादा है, या फिर उसके बाद हमारा नंबर है। बाकी सब जगह आपको भी पता है कि चंद पार्किंग की जगह, लोग सड़कों पे खड़े करके आते हैं बाहर, दूसरी जो साथ मिलती जुलती जगह है वहां पे जहाँ उनको जगह मिलती है, लेकिन जो हमारी जगह है बस उसको तो हम बड़ा नहीं कर सकते, इतना ही है। लेकिन अगर कम अज कम थोड़ा सा तरीके से अगर खड़ी हों गाड़ियां, तो मुझे यकीन है कि कम अज कम 5-7 गाड़ियां ज्यादा आ सकती हैं, जो आजकल जिस तरह हालात है, मतलब खड़ी करके लोग चले जाते हैं और परवाह नहीं करते कि पीछे आने वाले का क्या बनेगा। तो जरा थोड़ा सा अगर ख्याल कर लिया करें तो उनके लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी मदद हो जाएगी। तो इंशाल्लाह बस दुआ ही है कि लोग जरा इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, जो पार्किंग
0: उबैद साहब, बहुत शुक्रिया आपने इन्फॉर्मेशन दी। अगर कोई आप बात कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं।
1: है। नहीं जनाब, बस यही जो अपील की थी कि जुमे के वक्त अगर लोग जरा वक्त पे पहुंच जाया करें तो हमें भी बड़ी खुशी होगी और उनको भी कुछ हासिल होगा, और जो है जुमे का सही वो सवाब भी हासिल कर सकें। और बस यही एक दरख्वास्त है, और तावन रखें जारी, और जितने ही हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें भी तशरीफ लाएं। उसके अलावा नौजवानों के लिए बड़े प्रोग्राम हमने सेट किए हुए हैं, हफ्तावार क्लासेस होती हैं, डेनिश में ही है वो सारा कुछ, हर किस्म की क्लासेस हैं, मुख्तलिफ क्लासेस है, आपको सब पता है, बच्चे आपके भी इधर ही मस्जिद में आते हैं पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो सबसे अपील है कि जी उसमें बढ़ चढ़ कर उनके अपने जौक को, अपने इल्म को जो हासिल करने के लिए वो आएंगे। जगह हमने बना दी है, हमारी कोशिश जितनी है कि वही है कि फैसिलिटी सारी प्रोवाइड कर दी है, आगे अब लोगों का काम है कि कितना उससे वो फायदा हासिल कर सकते हैं।
0: वैसे साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
1: मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज।
0: सामान नाजरीन, ये थे उबैदुर्रहमान कुरैशी साहब, जो कि अपने कल्चरल सेंटर की, इंस्टीट्यूट की जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। सामान नाजरीन, हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नाब ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: में इस तरह की चीजें हैं जो उनसे परहेज किया जाए, और इसमें कोई शक नहीं है, मेले करना हमारी सकाफत का हिस्सा है, और हमारी सकाफत है जो वो फकत आमू के साथ नहीं जुड़ी हुई, ना सिर्फ हमारी सकाफत है जो वो कुल्फियां हैं, ना गोलगप्पे हैं, और ना ही वो पकौड़े समोसे और जलेबियां हैं, हमारी सकाफत इसके अलावा और बहुत कुछ है। ये चीजें हैं जो, ये आमू का मेला अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको मुनासिब वक्त पर किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के मौके, और बिलखसूस जब ये खास दिन हो, मसलन 10 मुहर्रम अल हराम को हमारे नबी की औलाद के 18 नफूस तो नबी की औलाद के अपने घर से शहीद हुए हैं इमाम पाक के साथ, और 72 दीगर शहादतें हैं, और फिर मस्तूरात की जो बेहुरमती बेअदबी की गई है, इन तमाम चीजों को सर नेजों पर उठाकर बाजारों में घुमाए गए हैं, उनकी बेअदबी की गई है, हमारे दिल जख्मी होते हैं। तो ऐसे मौका के ऊपर इस तरह के जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ ये अखलाकियात के बिल्कुल खिलाफ हैं, अखलाकियात के मुनाफी हैं, इनसे परहेज करना चाहिए। और इनको ये शरी तौर पर कोई वाजिब तो नहीं था कि 11 मुहर्रम को और 12 मुहर्रम को मेले लगाए जाएं, इनको ताखीर भी इनमें की जा सकती है, इनका इंतजार भी किया जा सकता है, छुट्टियां पूरा जुलाई का महीना भी छुट्टियां हैं, अगस्त का पहला महीना भी छुट्टियां हैं, तो अगर इनको किसी और वक्त पे मुअख्खर किया जाता तो ज्यादा मुनासिब था। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसमें जो जाती तौर पर लोगों की कुछ मनफियत हो सकती है, लोगों के अपने मकासद हो सकते हैं, क्योंकि जो मेला होता है इसमें अच्छी बात है, हमें अपनी सकाफत का रंग है जो दिखाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ खाना नहीं है बल्कि सकाफत में हमारी जुबान आती है, हमारा मेल जोल आता है, हमारा लिबास आता है, हमारा रहन सहन आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि हमारी सकाफत का अहया, और वो भी मैं मुस्लिम सकाफत, पाकिस्तानी सकाफत, बल्कि इलाकाई सकाफत है जो, उसको भी प्रमोट करना चाहिए, लेकिन इसके बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि कोई बंदा सिद्ध के दिल के साथ अपनी जो सकाफत है उसको प्रमोट करना चाहता है, उसको लोगों को अपने बच्चों को दिखाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। ये भी हो सकता है, इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि उससे कोई नफा कमाया जाए, उसमें स्टॉल्स लगते हैं, उसमें खरीदो फरोख्त होती है, तो उससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, ये भी एक मकसद हो सकता है। और राय साहब, इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि किसी बंदे को जाती तशहीर के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी इस तरह के काम किए जा सकते हैं, कि जिसमें अपनी तशहीर, अपनी प्रमोशन जो है वो भी मकसूद हो सकती है। तो बहुत सारे इसके मकासद हो सकते हैं, ये काम अच्छा है, मैं इसमें इसके हक में हूँ, ये इस तरह के मेले वगैरह होने चाहिए, ये हमारी सकाफत के अक्कास हैं, लेकिन ये कि इनका वक्त है जो, उसको मुनासिब वक्त पर रखना चाहिए और परहेज करना चाहिए, और जो इस तरह के हमारे मखसूस अय्याम हैं जिनमें खासकर शुहदाए करबला का जो आशूरा का दिन है, इसकी अकीदत की वजह से, इसके तकद्दस की वजह से ऐसे प्रोग्रामों को जरा ताखीर से किया जाए तो ज्यादा मुनासिब है।
1: शाह साहब, दूसरा, जो कि आप सबका डिप्टी मेयर हैं, मौजूदा सिटी काउंसलर हैं, हैट्रिक आप मुकम्मल कर चुके हैं, तो शाह साहब, यहाँ तो कानून इजाज़त देता है, जलसे जुलूस की हर चीज़ की इजाज़त देता है, तो मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाता है, फिर कानून की हम खिलाफ वर्जी भी करते हैं, जिस चीज़ों से मना किया जाता है वो चीज़ें भी हम करते हैं, तो शाह साहब फिर आस्ते आस्ते छोटी छोटी सख्तियाँ भी आ जाती हैं, फिर हम सियासतदानों को कसूरवार भी कहते हैं।
0: जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हम एतराज तो करते हैं, हम जो हुकूमत या जो हमारे मुल्की इदारे होते हैं या हमारे मुखालिफिन होते हैं, हम उन पर तो एतराज करते हैं जी कि ये हमारे खिलाफ ये हर्जा सराई करते हैं और हमारे खिलाफ ये बातें करते हैं, गैर मुल्कियों के खिलाफ बातें होती हैं, लेकिन उसमें कुछ कसूर हमारा अपना भी होता है जिसे हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस जो हमें अलाउड है हुकूमत की जानिब से, मुल्की कवानीन के मुताबिक हमारे लिए वो जायज हैं, लेकिन ये कि उसमें भी बहुत सारी एहतियात है जो अगर उसका उनसर रख लिया जाए, एहतियात के साथ वो काम किए जाएं जिससे दूसरों के लिए कोई मसला ना बने। मिसाल के तौर पे आजकल पार्किंग के बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो वो मुख्तलिफ जगहों पर हो रहे हैं, इसी तरह जो आशूरा का जुलूस है बिल्कुल कानून इसकी इजाजत देता है, तो जब उसकी इजाजत है तो उसे कोई अमर माने नहीं है उसमें कि کہ عاشورہ کا جلوس ہے جو وہ نہ نکالا جا سکے اس میں

0: बताइए कि उसको बेहतर किसी तरीके के साथ मैनेज अच्छे तरीके के साथ किया जा सकता है। तो जिन जिन चीजों की तो हमारा कानून हमें इजाज देता है, उन पर किसी किसी तरह की कोई कदम, उन पर कोई इस तरह का कोई एम्बार्गो है जो वो नहीं होना चाहिए। बहैसियत डेनमार्क के शहरी हमारे पास वही हकूक हैं जो बाकी रिलीजियंस को हासिल हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा मुनासिब ये है कि अगर इन हमारे जो प्रोग्राम है उनकी मिसाल के तौर पे उनकी जो तरतीब है उसको बेहतर किया जा सकता है, आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे के साथ रवाबत करके। तो अब मस्जिद के प्रोग्राम होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही दिन दो मुख्तलिफ मसाजिद में प्रोग्राम होते हैं, तो फिर जाहिर है लोग वहां पर भी शामिल नहीं हो सकते, किसी एक जगह ही बंदा शामिल हो सकता है। तो अगर इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए और इसकी तरतीब है जो उसको बेहतर कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसाइल हैं जो वो गैर जरूरी तौर पर जो हम तनकीद का निशाना बनते हैं उससे हम बच सकते हैं।
1: शाह साहब, छुट्टियां ख़त्म होने के बाद पार्लियामेंट दोबारा खुल जाएगी, तो उसका हम बात कर रहे थे, गैदरिंग की, मेलों की बात कर रहे थे। अच्छे वक्त में जब ये गैदरिंग की जाती है, बड़ी अच्छी गैदरिंग होती है, तो हम बातें तो बहुत करते हैं, तो ये जितनी पार्टियों के सियासतदान होते हैं, एक स्टेज बनाया जाए, जो मुंतजमीन होते हैं वो पूरी साल अपनी तैयारी करें, लोगों को दावत दें, एक स्टेज बनाएं और सारी पार्टियों के, मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों को बुलाएं, वहाँ डिबेट हो, बातचीत हो, सारा जो है वो ये इंतज़ाम होना चाहिए, और जमहूरी तरीके से करें, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, ये लड़ाई झगड़े वाला मुल्क तो नहीं है।
0: जी बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे हमारी बदकिस्मती है कि हम चूंकि मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं और हमारी जो अक्सरियत है वो हमारे जो पॉलिटिकल निज़ाम है उसके साथ वाबस्ता नहीं है। हमारे बहुत थोड़े लोग हैं जो जो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है, और यही वजह है, गुज़श्ता हमारी एक दफा बात हुई थी आपके ही प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब हमारे कुछ नौजवान हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है जब हम इस काबिल भी नहीं बन हो सकते कि हम अपना एक नुमाइंदा जो पार्लियामेंट में भेज दें। तो बमुश्किल हम 10 काउंसलर्स हैं जो पूरे डेनमार्क में पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बैकग्राउंड वाले हैं। तो ये इसकी जो असल वजह है वो यही है कि हम में से हर शख्स है जो वो अपनी अपनी दुनिया में मगन है और अपने आप को, हर बंदा है जो दूसरे के लिए तआमुन करने की बजाय दूसरे की टांग खींचने की, मैं बल्कि अक्सर कहता हूँ कि एक दूसरे का हाथ पकड़ने की बजाय एक दूसरे की टांगे खींचने की कोशिश ज्यादा की जाती है। तो ऐसी सूरत में जाहिर है जब हमारी कम्युनिटी आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा, तो हम किस तरह बाकी लोगों को जो मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं, आज तक मुझे ऐसा कोई कम अज कम मौका नहीं मिला कि जहां पर मुख्तलिफ ज़हनियत के लोग बैठे हों और वो आपस में अपनी अपनी वाबस्तगियां कायम रखते हुए इसके बावजूद ये कि हम अपने अपने मसाइल डिफाइन कर सकें कि हमारे लिए मुश्किलात कौन कौन सी हैं और उसके लिए हम सियासी तौर पर एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। और बजाय इसके कि हम अपनी अपनी बल्ले बल्ले बनाने की बजाय कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया, तो अगर ये इज्तमाही तौर पर काम किए जाएं तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के मसाइल हैं जो उनको, मैं समझता हूँ जितने भी काउंसलर्स हैं वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ऐलान होता है, हमेशा होता है कि मेरे कमून में अगर किसी बंदे का कोई मसला है तो वो मुझसे रब्ता करे और मैं उसके लिए जो कुछ कर सकता हूँ। मैं आज तक, मुझे जब भी किसी बंदे ने मुझसे रब्ता किया
1: तो शाह
0: उसका
1: साहब, ये
0: काम हो
1: सवाल
0: सका
1: उठता
0: या नहीं हो
1: रहता है,
0: सका।
1: आपने किया क्या है?
0: माशाल्लाह जी, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। अब ये है कि अगर कोई आंखें बंद करके बैठे और आंखें ना खोलना चाहे तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने किया क्या है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया और इसका जिक्र आप कई मरतबा कर चुके हैं अपने रेडियो के ऊपर, और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं 4 मरतबा कामयाब हो चुका हूँ। तो अगर मैंने कुछ ना किया होता तो मैं चौथी मरतबा भी, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा कामयाब ना होता। तो जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है मुझसे कि मैंने किया क्या है, उसकी दो वजूहात हो सकती है। एक तो ये है कि वो बिल्कुल ला इल्म है, उन्हें पता ही कोई नहीं कि मैंने क्या किया है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि उनका दिल नहीं मानता कि वो किसी चीज को कहें कि मैंने भी कुछ किया है। तो मैं मुझे मुजीब रहमान कुरैशी साहब के अल्फाज याद आ जाते हैं कि इलेक्शन से पहले जब एक हमारा इस तरह प्रोग्राम हुआ था, तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं इन चीजों को जरूर बताऊं कि मैंने क्या किया, और उसकी वजह मैंने तब भी गुजारिश की थी, आज भी वही गुजारिश करता हूँ कि मैंने, चूंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैंने सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर किए हुए हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों के सामने उनका जिक्र करूं, और ना ही मुझे किसी किसी शख्स की कोई एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि कोई मुझे कहे जी कि इसने ये काम किया है। मैंने जो काम अल्लाह के लिए किए हैं, मैं उनका अजर अल्लाह से चाहता हूँ, और दुनिया में मुझे किसी की आशीर्वाद की, किसी की बल्ले बल्ले की, किसी के एक्नॉलेजमेंट की मुझे जरूरत भी नहीं है। तो बहरहाल आप चाहते हैं, अगर ये सवाल है कि मैंने क्या किया, तो चले मैं मुख्तसरन, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, मैं आपको ये जो ताजा तरीन 1-2 साल हैं इनके कुछ काम बता देता हूँ। और मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये अल्लाह पाक इसमें मेरा तकब्बुर शामिल ना हो, मेरी रियाकारी शामिल ना हो, और मैं अल्लाह से इसका अजर चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 मसाजिद के लिए ये पिछले दो दो तीन सालों में मैंने काम किया, और इत्तेफाक ये है कि बदकिस्मती हुई अगर उनका काम नहीं हो सका, जो काम मेरे जिम्मे था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो करवाया है। मैं आपको नाम लेकर बता सकता हूँ, आप अगर किसी को शक है तो जाए मोहतरम सफदर भट्टी साहब जो ईसाई वाले हैं उनसे पूछ लें, उन्होंने मस्जिद का ब्रॉन्डबी में उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी मदद की थी, उनका प्रोसेस मैंने करवाया था। ये एक अलग बात है कि वो मस्जिद है जो उसके लिए खरीदने के लिए जगह है जो वो कमून की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी। उसके बाद आ जाए हमारे DMC वाले दोस्त हैं जो मोहतरम इम्तियाज सीविया साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, एक बिल्डिंग वो खरीदना चाहते थे यहाँ पर पौनपी कमून में, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, मैंने अपनी तरफ से भरपूर उनके साथ तआवुन किया था, उनका रब्ता करवाया था अपनी फोवेल्डिंग के साथ। उनका काम भी किसी वजह से वो कमून ने इजाजत नहीं दी, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे जिम्मे ये था कि मैं उनका रब्ता करवाता, मैं उनके साथ बैठता, मैंने वो अपना भरपूर तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी जो पूरी की है। उसके बाद आ जाए जो हमारे बंगाली कम्युनिटी है, उन्होंने मस्जिद खरीदने के लिए ये फ्रंट भी में कोशिश की थी फ्रंट भी वेस्टा में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ भी उसी तरह तआवुन किया जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ करता हूँ। तो ये भी बदकिस्मती है कि तीनों मरतबा हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी तरफ से, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मुझसे जिस किसी ने भी राबता किया मैंने उनके लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। और एक चौथा प्रोजेक्ट इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, चूंकि अभी उसका कोई फैसला नहीं हुआ इसलिए मैं उसका नाम जाहिर नहीं करना चाहता, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आने पर मैं वो भी बताऊंगा कि उनके साथ भी मेरा तआमुन है जो वो अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है। तो मैं ये फकत 4 मिसालें आपको मैंने पिछले 1-2-3 सालों की मैंने बताई हैं, और वो भी सिर्फ मसाजिद के हवाले से बताई, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ये हमारी तुर्की मस्जिद हमारे सामने जो मौजूद है, उन्होंने वो ईद का फेस्ट करना चाहते थे, उनको कमून की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी, उन्होंने मुझसे राबता किया तो मैंने उनको इजाजत लेके दी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। पिछले साल उनको कमून ने आउवीज कर दिया था, इजाजत नहीं दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको इजाजत लेके दी थी। और ये जो हमारे खान स्कूल वाय के ऊपर और चानेवांग के ऊपर जो कोने के ऊपर जो तुर्की मस्जिद वालों ने जो विला खरीदा हुआ है, अल्लाह के फजल से मैंने उनको 3 साल के लिए उसकी डिस्पेंसेशन लेके दी हुई है, वो सिर्फ बेबोल से के लिए था कि वो सिर्फ रिहाइश के लिए था, और उसमें वो सिर्फ रिहाइश रख सकते थे, लेकिन अल्लाह के फजल से मैंने उनको 3 साल के लिए उसकी इजाजत लेके दी है, डिस्पेंसेशन लेके दी है कि उसको वो फोइनिक्स आवर्ड के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह का शुक्र है, मुझसे जो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता जी कि मैंने बड़े बड़े पहाड़ तोड़े हैं, मैंने कोई बड़े काम किए, लेकिन जब जब किसी ने मुझसे रब्ता किया मैंने भरपूर तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमारे कब्रिस्तान के मसाइल हैं, उनसे जाके पूछिए मैं उनके साथ शामिल हूं या नहीं शामिल हूँ, वो मस्जिद के सॉरी कब्रिस्तान के लिए मजीद जगह खरीदना चाहते हैं, कब्रिस्तान के जो वहां पर कब्रों के मसाइल हैं कि वहां पर नीचे पानी आ जाता है, कब्र खोदी जाती है नीचे पानी आ जाता है, उनसे पूछिए जाके कि उनके साथ ब्रंडबी कमून में उनकी मीटिंग किसने करवाई है, डायरेक्टर के साथ किसने मीटिंग करवाई है, उनकी मीटिंग्स में उनके साथ कौन शामिल रहता है। मैं 4 दफा तो उनकी मीटिंग्स में वहां पर जा चुका हूँ, उनके साथ कमून में उनकी 2 मीटिंग्स में करवा चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तआवुन उनके साथ भी बहसीत मुसलमान उनके साथ भी शामिल है। तो मैं इस बात में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जमीर मुतमईन है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से अदा कर रहा हूँ। ये मैंने चंद मिसालें आपको बताई हैं, मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, और अगर किसी को कोई ना जानना चाहे किसी वजह से, या अगर किसी को मुझसे कोई हसद है, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हसद के लिए तो अल्लाह पाक ने, अगर कोई ये कहता है कि इसने किया क्या है, तो ये चीजें उनको बताएं कि वो ये कहता है कि मैंने ये किया, और जाएं जाके इनके इनके बारे में कंफर्मेशन कर लें, अपनी तस्दीक कर लें। और अगर किसी को मुझसे कोई जाती तौर पर कोई मुखासमत है, तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सबको हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। तो ऐसा मेरा जमीर मुतमैन, मैं अपने जिम्मे का काम है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले भी मैंने किया है, आज भी कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह की तौफीक हुई मैं आइंदा भी करता रहूंगा, और इस पर मेरी कोई तख्सीस नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई शख्स मुझसे राबता ही नहीं करता, मुझसे किसी बारे में पूछता ही नहीं है, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। हाँ, अलबत्ता मुझसे कोई बात करे, मुझसे कहे कि हमारा ये मसला है, ये मामला है, ये हमारे साथ इस चीज की उनको मदद की जरूरत है, मैं इनकार करूं, तो वो हक बजानब है कहने के कि मैंने उनकी मदद नहीं की। लेकिन किसी बंदे को ये हक और इख्तियार मैं नहीं दूंगा कि मुझसे पूछे बगैर, मुझसे कहे कुछ ना, मुझसे काम मेरे जिम्मे लगाए कोई ना, और कहे कि मैंने उसके लिए किया कुछ नहीं, आई डैम केयर, मुझे किसी ऐसे बंदे की किसी बात की कोई परवाह नहीं।
1: शाह साहब, आपने बड़ा अच्छा किया, तफसील से बताया और बड़े अच्छे तरीके से बताया, सियासी तरीके से बताया, जमहूरी तरीके से बताया, भाईचारे के तरीके से बताया। तो शाह साहब, ये जो इलेक्शन होते हैं ये तो 4 साल बाद आने ही आने हैं, पार्लियामेंट का तो आता है वक्त पर भी, लेकिन वो तो किसी टाइम भी हो सकते हैं। तो शाह साहब, हम सब जो है वो कम्यून का मेम्बर बनना भी चाहते हैं, मेयर भी बनना चाहते हैं, पार्लियामेंट के मेम्बर भी बनना चाहते हैं। तो हमारे तुकीर शाह साहब अक्सर फरमाते हैं कि सिर्फ हम अपनी पर्सनैलिटी के लिए बनना चाहते हैं, अपनी वाह वाह के लिए बनना चाहते हैं। तो शाह साहब, यहाँ जमहूरी मुल्क में रहते हुए यहाँ तो काम करने पड़ते हैं।
0: जी बिल्कुल, ऐसा ही है। वैसे देखें, ये जो जमहूरी मुल्क है, इसने हमें ये कितनी हमारे लिए खुशाइंद बात है कि हमारे पास ये मौका है। और जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि अगर हम आपस में इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ कोशिश करें, तो हमारी नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर हो सकती है, और हमें काम करने का मौका है। जो वो यकीनन, अब यहाँ पर कोई ना तो सड़कें बनवानी है, ना यहाँ पर खंबे लगवाने हैं, ना किसी का कोई ट्रांसफार्मर लगवाना, यहाँ पर इज्तमाई जो काम है वो लोगों के वही इसी तरह के हैं। मिसाल के तौर पे हमारा ब्रॉडबी में पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, और उसके सिलसिले में मैं आपको ये बताते चलूं कि खास तौर पर हमारी गली जो छुआने वाली, उसमें अब दोनों मसाजिद उसमें है। अब मसला ये होता है कि लोग आते हैं जुमा वाले दिन, अक्सर इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर पार्किंग, लोग गलत पार्किंग करते हैं, हालांकि वहां जुर्माने लगाने के लिए भी उसका भी बंदोबस्त है कि वो कमून की तरफ से लोग जो कॉप्स वाले हैं वो आते हैं, वो आके जुर्माने भी लगाते हैं। इसके बावजूद लोग गलत पार्किंग करते हैं, लोगों के दरवाजों के सामने उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो वहां से निकल नहीं सकते, बाज लोग गाड़ियां ऐसी पार्क करते हैं कि वहां से गुजरना मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत में अब जाहिर है जिम्मेदार हमने, और हमारी चूंकि दो मसाजिद हैं, और मसाजिद की तरफ से हमेशा ये कोशिश की गई है, अपने नमाजियों को रिक्वेस्ट की गई है, बल्कि दोनों मसाजिद की तरफ से लोग बाहर खड़े होते हैं जो पार्किंग करवाते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको अच्छे तरीके से पार्क करें, ताकि हमारे जो हमसाए हैं उनको मौका ना मिले कि वो हमारी शिकायत कर सकें। इसके बावजूद हमारे लोग, कभी आप यहाँ पर आके देखें तो जब जुमा खत्म होता है तो यकीन जाने कि यहाँ पर वो जिसे डायनेमिक कैओस कहते हैं ना, इस तरह के हालात होते हैं कि 5-5, 10-10 मिनट लग जाते हैं गाड़ियों को निकलने की, चूंकि उनका रास्ता नहीं होता, लोगों ने गलत पार्किंग की होती है। तो अब इस सिलसिले में चूंकि हमारे जो पड़ोस के जो लोग हैं और जो कौन आया फोइनिंग है करीबी, उन्होंने इवन के उन्होंने कमून को शिकायत हमारी की है, दोनों मसाजिद का नाम उन्होंने लिख के इसकी शिकायत की है। तो कमून में यह बात जरा गौर आई है, तो फिर उस पर कमून ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में 2 जुमे यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, और एक फर्म हायर करके तो कमून ने इसका जायजा लिया कि क्या यहाँ पर पार्किंग के मसाइल क्या हैं। तो उन्होंने ड्रोन्स के जरिए और तस्वीरें बनाकर और लोगों की गिनती करके, उन्होंने बल्कि यहाँ तक भी हमें उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यहाँ पर तकरीबन 900 लोग हैं जो वो उनकी एंट्री इन और आउट हुए हैं इस यानी 1 घंटे के दौरान जो उन्होंने टाइम लिमिट वहां पे रखी थी, उसके दौरान उन्होंने ये भी लिखा है कि लोग पार्किंग किस तरह करते हैं। और उसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि चूंकि ये अक्सरियत वो उस टाइम का उन्होंने इंतखाब किया कि जब हमारा जुमा होता है, हालांकि हमारी दोनों मस्जिद ने आपस में अफहम और तफहीम के साथ लोगों की बेहतरी के लिए और इसलिए कि पार्किंग के मसाइल न बने, दोनों मस्जिद ने अपने जुमा के अवकात मुख्तलिफ रखे हैं। तुर्की मस्जिद में जुमा पहले होता है ताकि वो लोग पढ़ के तो वो निकल जाएं, और उसके बाद जो पाकिस्तानी हमारी मस्जिद है उसमें जुमा का टाइम है जो वो उससे कम से कम आधा घंटा पौना घंटा बाद इसलिए रखा गया है ताकि लोगों के लिए सहूलत रहे। लेकिन जो लोग भी आते हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो मस्जिद के करीब तरीन आकर अपनी पार्किंग करे, तो फिर ऐसी सूरत में मामलात हैं जो वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो कुमून ने इस सिलसिले में जो बल्कि ये 23 पिछले महीने की 23 तारीख को कुमून ने एक बिबो अमूल भी बुलाई बुलाई थी, जिसमें कुमून उससे बल्कि उससे पहले पहले कुमून ने हमारी दोनों मसाजिद के साथ और जो करीबी जितने भी रिहायशी हैं सबके साथ कमून वालों ने खुद फर्दन फर्दन सबके साथ मीटिंग की है, और किसी एक बंदे के साथ उन्होंने मीटिंग नहीं की। कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक बंदे को उसके साथ जो बात करने के लिए यहाँ पर कमून वाले आए हूँ, वो सबके पास फर्दन फर्दन सबके पास गए हैं और उनको जाके बताया कि ये सूरत हाल है और उनकी तजावीज भी ली गई हैं। और बिबो अम्यूज है जो उसका भी मकसद यही है कि लोगों से तजावीज ली जाएं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि कमून के जेरे गौर जो मुख्तलिफ किस्म की सिफारिशात हैं उसके मुताबिक एक चीज तो ये है कि यहाँ पर हमारी जो दोनों गलियां हैं स्कान स्कूल और शानवान, इन दोनों में ट्रैफिक जो है पार्किंग के लिए बोस बना दिए जाएं, यानी डब्बे बना दिए जाएं जिनमें 3 घंटे के लिए पार्किंग है जो वो टाइम लिमिटेड हो ताकि लोग उसमें पार्किंग कर सकें। और दूसरा एक तजवीज ये भी जेर गौर है कि खासतौर पर चुआनवांग है जो इसको इंस्कार्डल यानी वन वे कर दिया जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूंकि इसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक गुजरती है और गाड़ियों की पार्किंग भी होती है, और हमारा सबसे बड़ा मसला है जो मेरे नजदीक वो मसाजिद नहीं है वो हमारी वर्कशॉप है, जो हमारे साथ जो जितनी भी वर्कशॉप है 4-5 वर्कशॉप्स हैं उनकी जितनी गाड़ियां होती हैं वो इन दोनों रास्तों के ऊपर उन्होंने खड़ी की होती हैं। बाज़ हैं जो उनको नंबर प्लेट लगी होती है, बाज़ ऐसी हैं जिनको नंबर प्लेट भी लगी हुई नहीं है। अब उनको ना तो जुर्माना हो सकता है ना कुछ और हो सकता है। तो इसके अलावा एक तीसरी और चीज जो हमारे इलाके में पार्किंग के लिए बहुत बड़ा मसला बनती है, वो जिन लोगों की बड़ी गाड़ियां हैं जो वावोन है वो इस इलाके में आके जमा कर इस इलाके में आके यहाँ पे पार्किंग कर जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे पास तस्वीर है, मैंने तस्वीर लेकर कमून को भेजी है, उनको बताया कि ये सूरत हाल है और इसमें मसाजिद इतना जिम्मेदार नहीं है जितने लोग समझते हैं। इसमें ज्यादा जो प्रॉब्लम जिस वजह से क्रिएट होती है वो हमारी वर्कशॉप्स हैं जो चुआने वांग के ऊपर हैं। तो इस सिलसिले में कमून की तरफ से अब ये भी तजवीज है कि जो चुआने वांग हमारी यानी वो गली जिसमें दोनों हमारी मसाजिद हैं इसको वन वे कर दिया जाए, पेट्रोल पंप की तरफ से जो डामक्यू लेने वाले की तरफ से उधर से एंट्री होगी और यहाँ से स्थान स्कूल वाई के ऊपर जो इसका एग्जिट होगा। तो ये भी जेरे गौर एक तजवीज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर मजीद काम है जो वो होगा। और मैं चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हमारी वेल्डिंग का जो उल वेल है जिसका नाम प्लान उल वेल जिस वक्त जो पहले चकनी को मिलियो होता था अब वो दो हिस्सों में तकसीम होके चकनी को प्लान उल वेल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका मेंबर हूँ तो मैं उस सारे प्रोसेस में शामिल हूँ। और जब भी जरूरत पड़ती है जिन चीजों की जाहिर है मैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे जो पार्किंग के मसाइल हैं इंशाल्लाह जल्द इनका कोई हल निकाल दिया जाएगा। और मैं आपके तवस्सुत से ये भी चले मैंने अभी तक नहीं बताया था कि मैंने कमून को ये भी तजवीज पेश की है कि जो हमारे ये जो ग्रीन बेल्ट जहां पर इस वक्त हमारे फ्यान वाम के लिए मशीनें वगैरह उन्होंने जगह रखी हुई है, जब फ्यान वाम का काम खत्म हो जाए तो मैंने तजवीज पेश की है कि इस जगह को आरजी तौर पर पार्किंग एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए और यहाँ पर 3 घंटे की पार्किंग है जो वो रखी जाए। तो और इससे कमून को यह भी फायदा हो सकता है कि वहां पर जुर्माना जो है अगर कोई ओवर से करता है अपने पार्किंग के टाइम के, तो कमून उससे पैसे भी कमा सकता है। तो मैंने ये तजवीज ये पेश की है कि जो हमारा कोना है, हमारा जो खिलगासमोसन बुलेवार्ड और मस्कान स्कूल वाय इशारे के साथ, जहां पर इस वक्त फ्यान वाम वाले उन्होंने एक जगह है जो जहां पर उनकी अपनी मशीनें वगैरह और उनके बाकी सामान है जो वो वहां पर मौजूद है, तो मैंने ये गुजारिश की एक मून को कि जब यहां से उनका काम खत्म हो जाए तो इस जगह को बतौर पार्किंग इस्तेमाल किया जाए, ताकि इससे ये भी फायदा हो सकता है कि जो लोग समुन्द्र की तरफ स्थान पे जाते हैं उनको पार्किंग के मसाइल होते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि यहाँ पर बहुत बड़ी जगह है तो वो भी यहाँ पर पार्किंग कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह राय साहब बारे दिगर में यही कहूंगा कि मैं अपने
1: इससे बड़ा अच्छा किया, बड़ी तफसील से बताया, हर चीज को वाजा कर दिया। तो शाह साहब एक चीज, तो जब हम लोगों ने सर्वे किया कि ये जो कानून कायदे सख्त हुए बने जब लोग 70-71 में आए, तो उस वक्त इतने ज़्यादा कानून सख्त नहीं थे, हमारे दौर में भी सख्त नहीं थे, जब आप आए आपके दौर में भी सख्त नहीं थे। तो जब हमने सर्वे किया कि ये कानून सख्त हुए क्यों हैं, पहले जब सख्त नहीं थे तो बाद में क्यों हुए, तो हमारे थिंक टैंक सैयद तकीर हसन बुखारी साहब ने जब सर्वे किया तो उन्होंने बताया कि इन कानूनों की जो सख्तियाँ पैदा हुई उसके सिर्फ हम खुद जिम्मेदार हैं। शाह साहब आप क्या कहेंगे?
0: ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी, शाह साहब का तजिया है जो बिल्कुल दुरुस्त है। कवानीन कहते हैं कि हर अमल का रद्द अमल होता है, अगर हम गलत काम ना करें तो उसके रद्द अमल के तौर पर सख्तियां नहीं होंगी। अब आप मुझसे बहुत पहले आए हुए हैं, मुझे तो थोड़ा अरसा हुआ यहाँ डेनमार्क में आए हुए, आपको पता है कि जितने सहूलतें हम लोगों को पहले थी वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होना शुरू हुई या कम होना शुरू हुई, उसमें हम लोग उसके खुद जिम्मेदार हैं। उसकी इब्तदा आप देख लें जी, कि जहां पर लोग दूसरे लोगों के वालिद अपने वालिद का नाम तब्दील करके लोग यहाँ पर आते थे, वो जमाना भी एक था। फिर उसके बाद ये कि ये सख्तियां होना शुरू हुई, और उसके बाद फिर वो फैमिली को सपोर्ट का जो वो कुछ करोन बंदा है जो बगैर टैक्स के जिसकी टैक्स में छूट मिलती थी, गालबन 10,000 था या जितना भी था, उसका मिसयूज हुआ, फिर वो भी बंद हो गया। उसके बाद फिर ये कि जी लोगों ने अपने जो सिबलिंग्स हैं, अपने बहन भाई हैं, उनको यहाँ पर बुलाना शुरू किया विजिट के ऊपर, और फिर उसका इतना बेदरेग इस्तेमाल हुआ कि लोग यहाँ पर आते थे और फिर यहाँ से वापस जाने की बजाय दूसरे यूरोपीय ममालिक में शिफ्ट हो जाते थे, तो वहां पे जाके कोई असाइलम अप्लाई कर लेता था, कोई किसी और तरीके से वहां पर एडजस्ट होने की कोशिश करता था। और वो वजह ये हुई और जिसकी वजह से पाकिस्तान को कैटेगरी 5 में डाल दिया गया है, और अब तक पाकिस्तान कैटेगरी 5 में है। पाकिस्तान वो उन चंद बदकिस्मत मुल्कों में से है जिसमें सिर्फ 5 मुल्क हैं जिनको वीजा मिलना जो सबके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो ये हमारे इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत सख्तियां जरूर करती है, लेकिन उसमें हमारे अपने आमाल हैं। जो अब जो वेंडल्स क्योर्सल जो लोग गाड़ियां इस तरह चलाते हैं जहां पे स्पीड 50 की होती है, वहां पे अगर कोई 100 पे चलाता है तो, और फिर हम कहते हैं जी कि हुकूमत ने अगर उसका लाइसेंस कैंसिल कर लिया है तो उसमें हुकूमत का कसूर नहीं है, कसूर तो उस ड्राइवर का है जिसने 50 वाली जगह पर 100 की स्पीड से गाड़ी चलाई है। लेकिन हम अपने गुनाह अपनी गलतियां जो उनको तस्लीम नहीं करते, हम सिर्फ ये तनकीद करते हैं कि हमारे खिलाफ ये काम हो गया, हुकूमत ने ये सख्ती कर दी। और शाह साहब ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इसमें हम अक्सरियत हमारी अपनी जो गलतियां हैं उनकी वजह से हम उनको दावत देते हैं। अब जितना महाज बना है हमारे खिलाफ, मिसाल के तौर पे उसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको, ये चंद दिन पहले जो फुटबॉल का मैच हुआ है उसमें जिस 32 साल नौजवान जिसकी हलाकत कल उसकी खबर पड़ी है कि उस वो इज नो मोर कि उसकी डेथ हो गई है, तो अब वो खेल का एक वो अपना झंडा लेके बैठा हुआ है स्वीडन का, और 6 लोग आते हैं जो गैर मुल्की पस मंजर वाले हैं, और उन्होंने उसके साथ जो कुछ किया है उसको मारा है, उसको इतना मारा है कि उसकी जान चली गई है। तो अब अगर आज हमारी जो लोकल अखबार आता है उसके ऊपर गैर मुल्कियों के खिलाफ ये लिखा जाए कि इनको इन मुल्क से इस मुल्क से निकालो, तो उसमें कसूर मरने वाले का है या मारने वालों का है? यकीनन कसूर उनका है जिन्होंने वो जुल्म किया है। और जब ये कहा जाता है जी अब तो हमारी जो लेफ्ट साइड की जो पार्टीज है वो भी ये कहना शुरू हो गई है, बल्कि मेरी अपनी पार्टी सोशल डेमोक्रेट है जो अब तो उसने भी ये कहना शुरू कर दिया है जी कि ये कानून है जो इसको सख्त किया जाए, जो जुर्म करते हैं गैर मुल्की तारकीन वतन है जो जो जुर्म करते हैं, बल्कि अब तो कानून है जो वो अनकरीब पेश होने वाला है कि जिसको एक साल से ज्यादा की सजा हो उसको उजवीज किया जाए, उसे मुल्क बदर किया जाए। तो ये हमारे अपने अमाल की सजा है, अगर हम जो लोग कानून का एहतराम करते हैं उनके लिए कोई मसाइल नहीं होते, मसाइल उसी वक्त पैदा होते हैं जब हम कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और फिर उसे तस्लीम करने से भी इनकार करते हैं और बदमाशी करते हैं कि हमारी बात मानी जाए। ऐसा नहीं होता, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। शाह साहब के तजिए से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जितनी सख्तियां होती हैं उसमें अक्सर व बेशतर जो उसका बैकग्राउंड होता है उसके हम खुद जिम्मेदार होते हैं।
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: बहुत शुक्रिया नारे साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह।
1: सामाई नाज़रीन, ये थे सैयद एजाज हैदर बुखारी शाह साहब, जो कि मौजूदा सिटी काउंसलर हैं और साबका डिप्टी मेयर हैं, रह चुके हैं। सामाई नाज़रीन, हम जिन ममालिक में रहते हैं इन ममालिक के कानून हैं, हमें हर हालत में कानून का एहतराम करना होगा। यहाँ तो कोई सिफारिश ऐसी नहीं चलती, जो जुर्म नज़र नहीं आता वो छुप तो जाता है, लेकिन जब कानून के नीचे कोई भी आ जाए तो फिर उसको माफ़ी नहीं मिलती। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हमारा जो आने वाला वक्त है, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, उसे आप सब ने मिलजुल कर जो है वो ज़्यादा मज़बूत बनाना है। तो उसके लिए डैनस सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा और बड़े अच्छे तरीके से लेना होगा। पार्लीमेंट होगी, कम्यून्स होगी, कम्यून ज़रा ईजी वे है, ये भी एक ताकत होती है जिस इलाके में आप होते हैं। आप देख रहे हैं शाह साहब बता रहे थे, वो सिटी काउंसलर हैं तो बता रहे थे ना कि कितनी चीज़ों में वो बैठते हैं, कमेटियों में बैठते हैं, तो किस तरह कानून कायदे बनते हैं, किस तरह कम्यूनें फैसला करती हैं। हमें उस तरीके से चीज़ों को लेना चाहिए, पर्सनली हर चीज़ को नहीं लेना चाहिए, कानून का एहतराम करते हुए किसी की चीज़ को लेना चाहिए। तो सामने साथ नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: क्राइटेरिया है, बड़ी बात जो है, जिस मुल्क का कोई क्राइटेरिया होता है ना राजा साहब, वो मुल्क तरक्की करता है। उस मुल्क में देखिए, दुनिया के जो मजाहब है ना, वो यही चीज सिखाते हैं कि इंसानियत के तकाजे सिखाते हैं। अगर ये ना होते तो फिर तो जंगल का कानून होता है, जहां पे कानून की पासदारी ना हो तो वहां पर तो फिर एवानियत होती है ना। तो एवानियत का तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो जानवरों वाला फिर तो कानून है। तो जानवरों वाला कानून हो तो ना उसमें शरीफ आदमी अमन में होता है, ना उसमें बुजुर्ग अमन में होते हैं, ना माए बहने ना बच्चे अमन में होते हैं। तो यह इंसाफ तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो दारुल कुफर है, इनका जो है एक अपना एक सोच है, इनकी अपनी एक थिंक्स है जो ये अपनी इस्तेमाल करते हैं जी। तो उस हिसाब से हम लोग जहाँ रहते हैं, इनके मुल्क में रहते हैं, हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, हमें इनके इनका एहसानात इनके एहसानात को नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ रहते हैं, इन लोगों की जमीन है, इन लोगों का एक मुल्क है, और उसके बावजूद भी ये हमें कई गलतियों से बर्दाश्त करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता जैसे अफगानी लोग हमारे पास थे, उनको हमारे मुल्क से निकाला गया, उसमें हम ये नहीं कहते कि 100% सारे अफगानी गलत थे, उनमें अच्छे लोग भी थे। ऐसी ऐसी फैमिली थी जो मैंने देखी, 40-40 साल से रहते थे, उन्होंने बेचारों ने किसी का गमला तक नहीं तोड़ा, किसी का कुछ चीज नहीं चुराई, अपनी मेहनत की, मजदूरी की, नमाज पढ़ते रहे और आदमी की इज्जत करते रहे। लेकिन वो बुराई की वजह, जो बुरे लोग थे उनकी वजह से उनको भी निकाल दिया गया। तो यहाँ अक्सरियत बुरे भी काम करने वाले हैं। मैंने देखा है आज दिन तक मुझे कोई डैनिश ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे गिरबान को पकड़ा हो, जिसने मुझे गाली दी हो। खुदा गवाह है कि मैं न भी नमाज पढ़ी है, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैंने मुसलमानों को देखा है यहाँ पे ज्यादतियां करते हुए। जी राजा जी,
1: खान साहब, आप बात कानून कायदे की कर रहे हैं, चूंकि आप खुद कानून का एहतराम करते हैं। तो खान साहब, इस जिन ममालिक में हम रहते हैं, ज़्यादातर लोग हमारे सियासत जो है अपने मुल्कों की करते हैं। जिन ममालिक में रहते हैं उन मुल्कों की सियासत क्यों नहीं करते? उन पार्टियों के मेंबर क्यों नहीं बनते? या तो मेंबर आप बन जाए, फीस भी ना दें तो कोई मसला नहीं होता।
0: राजा जी आपने सुना होगा एक पुराना मुहावरा है, खड़े होने की जगह दो तो मैं बैठने की खुद बना दूंगा, जब बैठने की बना दूंगा तो लेटने की भी बना दूंगा। ये राजा जी, हम मेजबान जो है ना, हम ऐसे बनते हैं, मेहमान ऐसे बनते हैं कि फिर वहां मेहमानी के बजाय मेजबान बन जाते हैं। हमें यहाँ पे, हम लोग आए हैं, मजदूर लोग हैं, मजदूरी के लिए आए हैं। हम लोगों को मजदूरी करनी चाहिए इन मुल्कों में, इस मुल्क को का कवानीन को फॉलो करना चाहिए। हमें, हम पैसे कमाने यहाँ आए हैं, इनको भी पता है, ये नहीं कि डैनिश को मालूम नहीं, इनको मालूम है कि ये मजदूरी के लिए आए हैं। हम यहाँ आकर जो है वो अपनी चौधराट खान की और जो जितने भी हम हमारे पास हो जो बाजारी नाम है, उन बाजारी नामों से हम इज्जत कमाना चाहते हैं जी। यहाँ पर भी वो ऐसा नहीं होता है, और तो इज्ज़ मन तशा वो तो जिल्ल मन तशा। अल्लाह की कसम, इज्जत है तो रसूलुल्लाह के तरीके में है, अल्लाह की कसम इज्जत है तो अल्लाह के हकाम में है। अल्लाह के हकाम के अलावा ये दुनियावी इज्जत, मजाजी इज्जत, ये कोई इज्जत नहीं है। हमें अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए, हमें मुसलमानों के लिए सोचना चाहिए, हमें एक अच्छा शहरी, अच्छा एक मुसलमान बनना चाहिए, ना के पाकिस्तानी, ना के मराकेश, ना के तुर्किश, ना के अदरवाइज जितने भी कंट्रीज है मुसलमानों की, हमें उन पे तवज्जो नहीं देनी। हम मुसलमान बनना है, हमने हमने जब मुसलमान बनना है तो हमें खुद ब खुद खुदा की कसम हमारी इज्जत बनेगी, क्योंकि हमें इस्लाम इंसानियत का दरस देता है। हमें इख्वतुल मुस्लिमीन क्यों कहा जाता है कि हम दूसरों के लिए बेहतरी करें, हम दूसरों के लिए हम दर्दी करें। आज ही मैं एक हदीस सुन रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी करो, लोगों के साथ मोहब्बत करो, भाईचारा करो, पड़ोसी तुम्हारा चाहे किस मजहब का है उसके साथ मदद करो, उसकी हेल्प करो, उसके दुख दर्द में शरीक हो जाओ। ये चीजें हैं, इंसानियत का दर्स देती है इस्लाम भी सब कुछ।
1: खान साहब, इंसानियत की बात करते हैं। खान साहब, ये जो काम की मंडी है, काम करने वाले लोग हैं, तो अगर कोई काम करना चाहे तो उसके लिए कोई मसाइल हैं? क्या कानून कायदा होता है?
0: बिल्कुल राजा साहब, कानूनी तौर पे कोई बंदा भी अगर काम करना चाहता है तो उसको काम की इजाजत है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा